91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह तुहां सारिआं दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं तुहां सारे इस टाइम जिहड़ा कार्यक्रम सुना देने से सुना देने माटी दी महक अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि कन्ने। तो कार्यक्रम च फिर अहां अगे बढ़ने जिहड़ा कि तुहां दा ध्यान है से फिर एक गीत संगीत दी तरफ ले चलदे न।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप है इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने, नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आज के कार्यक्रम में श्रोताओं बस इतना ही। अब अपनी रेडियो दोस्त पिंकी को दीजिए इजाजत और यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए।

0: and you said, how long was that?
1: इक्यानवे दशमलव दो मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117019701. आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कष्ट जानलेवा है, तंबाकू आज ही छोड़ें।
2: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं, ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान।
3: सुनो,
4: क्या है
3: ये सूट? कैसा है
4: ये तो बहुत अच्छा है।
3: अच्छा है
4: हाँ,
3: लेकिन ये 20,000 रूपए का है।
4: बस 20,000 का? आपको पता है आजकल इतने हैवी सूट तो 30,000 से कम में नहीं आते, ये तो आपको बड़े सही रेट पे मिल रहे।
3: अच्छा ले लो फिर।
4: हाँ हाँ ले लो ले लो।
3: चलो तुम कहती हो तो ले लेता हूँ। वैसे भी इस राखी पे मैंने दीदी को कुछ भी नहीं दिया।

दोस्तों, जिंदगी में ये जो भाग दौड़ है सिर्फ दो वक्त की रोटी के लिए, और ये एक निवाला सिर्फ एक निवाला नहीं है, इसकी भी एक पूरी कहानी है। दोस्तों, रोटी सिर्फ आटा नहीं होती, ये वक्त मेहनत और रिश्तों की गर्मी से बनती है। कोई खेत में पसीना बहाता है तो कोई धूप में खड़ा रहकर अनाज उगाता है, कोई बाजार की भीड़ में दिन बिताता है और कोई चूल्हे के सामने खामोश जलता है। तब जाकर एक छोटा सा निवाला हमारी थाली तक पहुंचता है। हम जल्दी में खाते हैं, कभी स्वाद की शिकायत करते हैं, पर शायद ये भूल जाते हैं कि इस एक रोटी में किसी की थकान, किसी की जिम्मेदारी और किसी का प्यार शामिल है। इसलिए अगली बार जब भी रोटी खाइए, जब भी इस निवाले को खाइए, तो सिर्फ पेट नहीं, दिल से भी महसूस कीजिए, क्योंकि रोटी की असली कीमत पैसों से नहीं, उसमें लगी मेहनत और

नमस्कार दोस्तों, 91.2 ओमेगा हर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और इस प्यारे से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और अपनी सेहत का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। और आज 5 मई 2026 का दिन, मंगलवार का दिन, बहुत ही प्यारा सा दोस्तों, प्यारा सा तब होगा जब आप प्यारी सी शुरुआत करेंगे दिन की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। और धर्मशाला की बात करूं दोस्तों तो लोग बहुत परेशान होंगे, मैंने पहले ही कहा था, जैसे ही धर्मशाला के जो ये मतलब कि ऊपर वाले क्षेत्रों की हम बात करें तो वहाँ जब फसलों का काम शुरू होता है ना तो मौसम कुछ ज़्यादा ही परेशान कर देता है। और वाकई वैसा ही हुआ ना, नीचे वाली साइड के लोग तो हो गए फ्री, कुछ कुछ रहे होंगे बीच बीच में, लेकिन हाँ जो अभी ऊपर काम अभी तैयार ही हुआ था और देखिए क्या हाल है। खैर मौसम के बारे में हम जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों ढेर सारी बातों के साथ शुरुआत हो चुकी है और आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की एक प्यारे से गीत के साथ। तो एंजॉय कीजिए अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया और सचमुच हम इस दुनिया की भीड़ में कहीं ना कहीं पता नहीं किसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इस भीड़ में हम खुद को ही कहीं ना कहीं भूलते भी जा रहे हैं। ये भी जिंदगी का सच है, हमारी आज के समय का सच है, आज के दौर का ये सच है। पहले किसी का पता होता ना होता, लेकिन खुद का पता ज़रूर होता था, लेकिन आज के समय में खुद के बारे में ही अक्सर हम भूल जाते हैं। खैर दोस्तों, इससे तो ज़िंदगी से जुड़ी तो खैर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हम नज़रअंदाज करते हैं उन्हें, ऐसे लाइटली ले लेते हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। खैर इसी के साथ दोस्तों, अब थोड़ा सा रुक करते हैं मौसम की ओर। तो आंखों देखा हाल धर्मशाला का इस समय आप सभी को बता दूं तो दोस्तों, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी यानी कि बारिश की बूंदाबांदी हो रही है, और रात की बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। पहले जब सोने का टाइम था ना, उस समय तो मौसम बिल्कुल ऐसे साफ हो गया था, ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब शायद 2-3 दिनों के लिए राहत मिलेगी और धूप जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि मई महीना है और मई में गर्मियाँ नहीं हुई तो फिर कब होंगी, क्योंकि जून में तो शायद बीच में, मिड में या फिर कई बार स्टार्टिंग में भी मानसून जो है वो उतर ही आती हैं। तो ऐसे में हालात समझ नहीं आ रहे हैं कि किस ओर जा रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है, बस यही कंफ्यूजन चल रही है। तो कहीं ना कहीं किसान भी बहुत

तो सोमवार की हम बात करें तो दोस्तों हल्की फुल्की सी बारिश तो हुई ही थी अगर दिन की बात करें, और रात को भी हुई, और अभी आज मंगलवार है तो आज भी मौसम ऐसे घने घने से काले काले से बादल जो है वो छाए हुए हैं। तो मौसम विभाग ने जो है वो ताज़ा बुलेटिन के अनुसार 5 मई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। तो ऐसे में हमें बिल्कुल अलर्ट रहना है। दोस्तों 6 मई को भी कई क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहेगा और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, और मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान मध्य और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा असर जो है मौसम का देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम 7 और 8-9 मई की बात करें तो थोड़ा सा शायद मौसम में सुधार देखने को मिल सकता है, और 10 मई को एक बार फिर से मौसम बदलने के आसार रहेंगे। तो दोस्तों देखिए मौसम इस बार मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, थमने का नाम ही नहीं ले रहा। 2 दिन धूप खिली खिली सी नज़र आ रही है और उसके बाद फिर से बारिश के आसार जो हैं हमारी नजरों के सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में किसान काम करें तो कैसे करें, क्योंकि गेहूं का काम ना बस यही तो होता है, हड़बड़ी में होता है कि बस जरा सी धूप देखने को मिली तो फटाफट से हम अपना काम खत्म करें, लेकिन अगर भीग गई बारिश में तब भी मुश्किल हो जाती है। तो क्या करें, मौसम है दोस्तों, मौसम के साथ कोई नहीं लड़ सकता। ऐसे ही चल रही है ज़िंदगी, हमें भी इसी के अनुसार खुद को ढालना होगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से।

0: दोस्तों, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रचिका के साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से। और दोस्तों, कुछ ही समय के बाद यानी कि 9:20 होने को हैं और आप सभी सुनने वाले हैं अपने आसपास की कुछ खास जानकारियाँ। उससे पहले दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, खास करके बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आज नहीं पिछले कल की हम बात करें तो बच्चों की मेहनत जो उन्होंने दिन रात लगा के मेहनत की थी अपने एग्जाम्स के लिए, अपनी स्टडी के लिए, तो वो मेहनत रंग दिखा चुकी है, यानी कि 12वीं का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है जी दोस्तों। तो बच्चों की ये खुशी जो झलक कर सभी के चेहरों पर देखने को मिल रही है, तो यहीं से पता चलता है कि कौन कितनी मेहनत करते हैं और कितने जुनून के साथ अपनी स्टडी को टाइम देते हैं। ज़रूर बात करेंगे दोस्तों इस पे भी, लेकिन सबसे पहले ये शुभकामनाएँ दे देते हैं बच्चों को और उनके पेरेंट्स को जिन्होंने बच्चों के साथ साथ मेहनत, क्योंकि पेरेंट्स की भी होती है, उनके साथ समय, उन्हें ऑब्जर्व करना, उन्हें समय देना, तो ये बहुत ज़रूरी है, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिलहाल समय हो गया है दोस्तों समाचारों का, तो हम अपनी इस बहुत ही खास और प्यारी सी बातचीत पे ज़रूर वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले सुनेंगे ये प्रादेशिक समाचार।
1: की बैठक आज जयपुर में, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया होंगे शामिल। प्रदेश के 51 शहरी निकायों के चुनाव के लिए 16 नामांकन रद्द, उम्मीदवार कल नामांकन ले सकेंगे वापस। राज्य में 3 चरणों में होने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक तैयारियां जारी। और लाहौल स्पीति जिले के शालग्रां गांव में सिंचाई व्यवस्था ठप होने से स्थानीय लोग परेशान, जिला प्रशासन व संबंधित विभाग से समस्या के समाधान की उठाई मांग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया। उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता व पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। कल शाम दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा NDA सरकारें सत्ता में है। उन्होंने कहा कि भाजपा का मंत्र है नागरिक ही भगवान है और पार्टी जनता की सेवा के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता इसलिए पार्टी पर अधिकाधिक भरोसा जता रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनता स्पष्ट रूप से देख रही है कि जहां भाजपा है वहां सुशासन और विकास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए एक नए सवेरे का आगमन हुआ है और जनता ने भारत के महान लोकतंत्र, प्रदर्शन की राजनीति और एक भारत और श्रेष्ठ भारत की भावना में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
2: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की सराहना की। रिकॉर्ड मतदान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनाव के सुचारू संचालन के लिए निर्वाचन आयोग, उसके अधिकारियों, मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों को बधाई दी। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के पीठासीन अधिकारियों की समिति की बैठक आज जयपुर में आयोजित होगी। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी इस बैठक में भाग लेंगे। इस दौरान राज्य विधानमंडलों की समितियों की कार्यप्रणाली के सशक्तिकरण के लिए गहन विचार विमर्श व मंथन किया जाएगा। बाद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य राज्य विधानमंडलों में इसकी कार्य प्रणाली को सशक्त बनाना है। प्रदेश के 51 शहरी निकायों में चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कल जांच के दौरान 16 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं। निकायों में 449 पार्षद पदों के लिए 1426 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। हालांकि कुल्लू और सिरमौर जिलों में नामांकन की छंटनी का काम पूरा नहीं हो पाया है। इन दोनों जिलों में आज स्थिति साफ हो पाएगी। उम्मीदवार 6 मई तक नाम वापिस ले सकेंगे और इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच होगा। प्रदेश में 3 चरणों में होने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार लगातार लोगों से संपर्क बना रहे हैं और अपने पक्ष में वोट की अपील भी कर रहे हैं। इस बीच चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही है। किन्नौर जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की गई है।
3: तीनों हमारे अगर आप ब्लॉक की बात की जाए तो हर एक पंचायतें, जितनी भी पंचायतें हैं, उनको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया। अगर कोई ऐसी पंचायत जो अगर निर्विरोध चुनी जाती है तो उस संबंध में इलेक्शन वोटिंग जो है वो नहीं करवाई जाएगी।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। इस बीच मंडी जिले में भी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि 577 ग्राम पंचायतों, 14 पंचायत समितियों व 36 जिला परिषद सीटों के लिए मतदान 3 चरणों में 26, 28 व 30 मई को होगा। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में करीब 791,629 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 3,97,000 पुरुष और 3,94,000 महिला मतदाता शामिल है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
4: निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिले में कुल 3,135 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 451 संवेदनशील और 119 अति संवेदनशील केंद्र चिन्हित किए गए हैं। नामांकन प्रतिक्रिया 7, 8 और 11 मई को होगी, जबकि 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच और 14 व 15 मई को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके तुरंत बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। उपायुक्त ने भरोसा दिलाया कि यह चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराए जाएंगे। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से देश भर में अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य केंद्रों में आग से खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने नई दिल्ली में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का उद्घाटन किया और स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि सुरक्षा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर श्रीवास्तव ने कहा कि इस वर्ष के अग्नि सुरक्षा सप्ताह का विषय सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज अग्नि रोकथाम के लिए एकजुट है। उन्होंने कहा कि संस्थानों में सुरक्षा सुनिश्चित करना एक साझा और सामूहिक जिम्मेदारी है। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल ने कहा कि देवऋषि नारद के आदर्शों पर आधारित लोक कल्याणकारी पत्रकारिता ही समय की मांग है। विश्वविद्यालय के पत्रकारिता, जनसंचार व नव मीडिया स्कूल और विश्व संवाद केंद्र शिमला के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित देवऋषि नारद जयंती के व्याख्यान कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने नारद मुनि की तुलना एक ऐसे पत्रकार से की जो सत्य और सटीक सूचना के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाता है। इस बीच आज शिमला में भी विश्व संवाद केंद्र के तत्वाधान में देवऋषि नारद जयंती कार्यक्रम आयोजित होगा। लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर उपमंडल के तहत सालग्रां गांव में सिंचाई व्यवस्था ठप होने से स्थानीय लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि गांव की करीब 800 मीटर लंबी कुहल पिछले वर्ष प्राकृतिक कारणों से क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन अभी तक इसकी मुरम्मत नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में किसान गोभी व मटर की बुआई कार्य में लगे हैं और इन फसलों के लिए शुरुआती चरण में नियमित सिंचाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि सिंचाई व्यवस्था की समस्या के चलते
5: उनकी फसलें बर्बाद हो सकती हैं और उन्हें आर्थिक नुकसान की आशंका भी है। ग्रामीणों ने इस संबंध में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर आपातकालीन सिंचाई व्यवस्था की मांग की है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं, वहीं कुछ स्थानों पर बीती रात हल्की बारिश हुई। पिछले तीन दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और मई महीने में भी मौसम हल्का सर्द बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज व कल प्रदेश के कई जिलों में अंधड़ बारिश व बिजली कड़कने का अलर्ट जारी किया है। और एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने जमा दो के परीक्षा परिणाम से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, कांगड़ा के सरकारी स्कूल के अंशित ओवरऑल टॉपर, मेरिट में बेटियों का दबदबा। पंजाब केसरी के शब्द है, बेटियों ने बाजी मारी, अंशित ओवरऑल टॉपर। दिव्य हिमाचल के अनुसार 92.02% रहा जमा दो का परीक्षा परिणाम, बेटियों के फिर बल्ले बल्ले। दैनिक भास्कर ने खबर दी है, किन्नौर के कल्पा में पहली बार 8 से 10 मई तक होगा बर्ड फेस्टिवल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत को बताया ऐतिहासिक, कहा यह चुनाव परिणाम है लोकतंत्र की जीत। हिमाचल सहित 6 राज्यों के पीठासीन अधिकारियों की समिति की बैठक आज जयपुर में, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया होंगे शामिल। प्रदेश के 51 शहरी निकायों के चुनाव के लिए 16 नामांकन रद्द, उम्मीदवार कल नामांकन ले सकेंगे वापस। राज्य में 3 चरणों में होने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक तैयारियां जारी। और लाहौल स्पीति जिले के शालग्रां गांव में सिंचाई व्यवस्था ठप होने से स्थानीय लोग परेशान, जिला प्रशासन व संबंधित विभाग से समस्या के समाधान की मांग उठाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख करना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, और कार्यक्रम आप सभी इंजॉय कर रहे हैं इस प्यारी सी बारिश के साथ। गर्मियों के मौसम में बारिश क्या बात है ना दोस्तों, थोड़ी बहुत हो तो फिर अलग बात है, लेकिन जब ज़्यादा ही हो जाए तो कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो जाती है। खैर, चाय इंजॉय कीजिए और साथ ही साथ गर्मा गर्म पकौड़े इंजॉय कीजिए। ऐसी मौसम में तो यही सब हमारे समय को बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, अक्सर हम जिंदगी में जो चीज़ें हमारे पास होती हैं उन्हें हम भूल जाते हैं, लेकिन जो नहीं होती हैं उसके लिए हम हमेशा परेशान रहते हैं। बस कोसते रहते हैं खुद को कि क्यों नहीं है, कैसे होगा, बस यही सब बातें सोचकर हम अपनी ज़िंदगी के इस कीमती समय को गवा देते हैं। एक व्यक्ति को हमेशा शिकायत करने की आदत थी। मौसम ठीक ना हो तो शिकायत, काम ज़्यादा हो तो शिकायत, लोग समझ ना पाए तो शिकायत। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। एक दिन वो एक मंदिर के बाहर बैठा अपनी परेशानियां गिन रहा था। वहीं पास में एक साधु शांत भाव से बैठे मुस्कुरा रहे थे। व्यक्ति ने उनसे कहा कि मेरे जीवन में तो बस समस्याएं ही समस्याएं हैं। साधु ने उनसे पूछा, आज सुबह आँख खुली? हाँ खुली। खाना मिला? हाँ बिल्कुल मिला। चलने के लिए पैर, देखने के लिए आंखें हैं? वो चुप हो गया। साधु ने कहा, जिसके पास इतना कुछ है, अगर वो सिर्फ ना होने वाली चीजों को देखेगा तो दुखी ही रहेगा, लेकिन जो मिला है उसके लिए धन्यवाद कीजिए, वही असल में सच्चा सुख पाएगा। उस दिन उस व्यक्ति ने एक नया अभ्यास शुरू किया। हर रात सोने से पहले वो 3 बातों के लिए धन्यवाद कहता। धीरे धीरे उसकी शिकायतें कम होने लगी, उसका मन हल्का रहने लगा, रिश्ते सुधरने लगे और जीवन में शांति आने लगी। उसने समझ लिया था कि शिकायतें कम और धन्यवाद अधिक करने से ही जीवन सुंदर बनता है। तो यही है दोस्तों कुछ खास बातें, और आपको भी ये सीख, ये सबक अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लेना चाहिए कि जो आपके पास है उसके लिए शुक्रिया अदा ज़रूर कीजिए, धन्यवाद ज़रूर कीजिए। कहीं ना कहीं इसी चक्कर में हम जो नहीं होता है ना, जो पाना होता है उसे भी खो देते हैं। तो खैर दोस्तों, ये तो कुछ खास बातें हैं, और भी ढेर सारी बातें, क्योंकि आज का दिन ही खास है, तो क्या क्या खासियत है ज़रूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने इंजॉय किया और इस समय आप सभी इंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। इस बहुत ही प्यारे से सफर में इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सोमवार यानी कि पिछले कल 12वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम जो है वो घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम कोरोना काल को छोड़कर पहली बार परीक्षा परिणाम जो है वो 92.2% रहा है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 8.86% अधिक है। जी दोस्तों 8 संकाय में जिला कांगड़ा के पीएम श्री सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल भवारना के अंशित कुमार ने 500 में से 496 अंक हासिल कर पहला स्थान हासिल किया है। अंशित ओवरऑल मेरिट सूची में भी टॉपर हैं। तो दोस्तों इस लड़के ने मिसाल जो है वो कायम कर दी है। जिन लोगों की सोच में ये बातें आ जाती है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ज़्यादा नहीं होती है, प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा पढ़ाई होती है, खैर वो तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, अपनी अपनी सोच जो है वो डिपेंड करती है। बच्चे पढ़ने वाले होने चाहिए, फिर वो चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। वो सरकारी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पढ़ना नहीं होता है ना दोस्तों, तो वो प्राइवेट स्कूलों में चाहे आप जितना मर्जी उन पे पैसा लगा दो, जितना मर्जी उनको फैसिलिटीज आप दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि शायद उनका इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं है, तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को पता होता है कि उनकी सिचुएशंस, खास करके बच्चों को ना सिचुएशंस से रूबरू कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अपनी एक जो बोलते हैं ना हालात, पेरेंट्स चाहते नहीं है कि उनके बच्चे उन हालातों से गुजरें, लेकिन वो बातें, वो कहानी, वो सफ़र उन तक पहुंचाना शायद कुछ हद तक उनके स्ट्रगल के लिए ज़रूरी है। जब तक वो जानेंगे नहीं कि एक रुपए की कीमत क्या है, क्योंकि बच्चों के लिए एक रुपया कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्हें हर एक चीज़, हर एक फैसिलिटी बहुत अच्छे से मिलती है, तो वो उस संघर्ष को नहीं जान पाते। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक वो लाइटली लेंगे। लेकिन दोस्तों हमारी ज़िंदगी में एक शून्य की कीमत भी कितनी है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक रुपया तो फिर भी अलग बात है, लेकिन एक शून्य हमारी ज़िंदगी में, उसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है, हम कुछ भी नहीं हैं। वो चाहे तो हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है और हमें ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है, और वही चाहे तो हमें ज़मीन पर भी ला सकता है। इतनी ताकत है उस शून्य में जिसे हम कुछ भी नहीं समझते। तो है ना हमारी सोच में डिफरेंस, कोई बात मायने नहीं रखती है। मायने रखती है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी मानसिक सोच, हम किस तरह से, किस नज़रिए से, किस सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, बस यही हमारे लिए बेहतर रहता है। तो समय रहते समझ लीजिए, अदरवाइज तो फिर दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाती है। खैर आज बच्चों के लिए बहुत खास दिन है, बहुत खुशी का दिन है, और उनकी मेहनत जो है, जितनी उन्होंने मेहनत की है वो रंग लेकर आई है, और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि अपना नाम अपने जो है समाज में, अपने प्रदेश में, अपने देश में वो लहरा रहे हैं। तो उसके पीछे बहुत मेहनत रहती है बच्चों की। तो 12वीं का रिज़ल्ट, जो भी बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हुए हैं और मेरिट लिस्ट में रहे हैं, उनके लिए तो ढेर सारी बधाइयाँ। लेकिन हाँ, जो बच्चों ने मेहनत की है, भले ही मार्क्स कम, ज़्यादा परसेंटेज नहीं ले पाए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जिनकी परसेंटेज कम होती है उन्हें नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बात हमें कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। बच्चों को डांटना बिल्कुल नहीं चाहिए, उनके एफर्ट्स को देखिए, उनकी भावनाओं को समझिए। फिलहाल दोस्तों इसी बात के साथ, इसी खूबसूरत सी जानकारी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जी बिल्कुल दोस्तों, संगीत के बिना तो ज़िंदगी ही अधूरी है, क्योंकि जब भी हम परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, एकमात्र संगीत ही हमारा सहारा होता है उस समय के लिए, हमें परेशानी से बाहर निकालने के लिए, एकांत मन से बाहर निकालने के लिए।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और आज के दिन की हम बात करें तो वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हर दिन का एक अपना इतिहास, अपनी एक खासियत और उद्देश्य, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस दिन के लिए अवेयर करना, जागरूक करना। तो आज के दिन की क्या खास बात है दोस्तों, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़रूर जानते हैं इस बात से पीछे क्यों रहना। दोस्तों, आज के दिन आप सभी मना रहे हैं विश्व अस्थमा दिवस, 5 मई 2026 के दिन। विश्व अस्थमा दिवस 2026 के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा का विषय है अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों के लिए सूजन रोधी इनहेलर तक पहुंच, अभी भी एक अत्यावश्यक आवश्यकता है। जीना इस बात पर जोर देना जारी रखती है कि ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों को सांस के माध्यम से ली जाने वाली दवाएं मिल सकें, जो अंतर्निहित बीमारी को नियंत्रित करने और हमलों का इलाज करने के लिए आवश्यक हैं। जी दोस्तों, तो जैसे कि ज़िंदगी में जीने के लिए हर चीज़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, उसी तरह से बीमारियां भी आए दिन जो है हमारे घर दस्तक, हमारी ज़िंदगी में दस्तक दे देती हैं। कुछ थोड़ी सी भी अगर हम लापरवाही दिखा दें अपने लिए तो बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, मौसम के हिसाब से, हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से, हमारे खान पान के हिसाब से। अगर हम थोड़ा सा भी गड़बड़ा दें तो पूरी ज़िंदगी गड़बड़ा जाती है। तो हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक बार जब बीमारी घर कर जाती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है खुद को स्टेबल करना, खुद को संभालना। तो आज का दिन बहुत ख़ास है, इस पे और भी हम बात करेंगे, जानेंगे। लेकिन उससे पहले फिर से आप सभी को लेकर चलेंगे एक और प्यारे से ब्रेक की ओर, और उसके बाद फिर से मिलेंगे आप सभी के साथ ढेर सारी बातों के साथ। दोस्तों, समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख करना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है बेटियों के लिए, बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।
2: दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ, ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारे मनोरंजन के साथ। तो दोस्तों, वर्ल्ड अस्थमा डे तो हम आज के दिन मना ही रहे हैं, लेकिन साथ ही बहुत ही एक गंभीर सा विषय का दिन भी आज है दोस्तों, चाइल्डहुड डिप्रेशन अवेयरनेस डे। कितना खास है, जब डिप्रेशन की बात आ जाती है तो सचमुच ऐसे शक सा लग जाता है कि डिप्रेशन जो है ना, हमें पूरी ज़िंदगी भर के लिए एक परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी में डाल देता है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है, ये सब जानना हमारे लिए जो है वो बेहद ज़रूरी है। अब आज की ही हम बात करें, आज के दिन की बात करें या कल के दिन की बात करें, बच्चों का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, तो उससे पहले भी बच्चों को बहुत सारी ऐसी टेंशन्स, बहुत सारी ऐसी चिंताएं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो होता ही है दोस्तों, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर होता है खुद के आगे मतलब बढ़ना है, तो अब 12वीं का रिजल्ट है तो आगे जो भी फील्ड चूज़ करनी है उसके लिए परसेंटेज भी मैटर करती है। अगर किसी अच्छी फील्ड में जाना है या जो भी है, किसी अच्छे कॉलेज में हमें एडमिशन लेनी है तब भी हमें अच्छी परसेंटेज चाहिए, तो पेरेंट्स का ना एक प्रेशर होता है कि अच्छी परसेंटेज नहीं आई तब हम आपको पूछेंगे या ये वो सो, मतलब बहुत सारी बातें। तो ऐसे में बच्चों को समझ नहीं आता कि वो क्या करें और क्या ना करें। तो खैर, एक इस पे हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान देने वाली बातें हैं और छोटी छोटी सी बातें हैं, तो ज़रूर जानेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं जिसकी वजह से बच्चों की ज़िंदगी को सही बनाया जा सकता है और पेरेंट्स की एक छोटी सी पहल या एक छोटी सी समझदारी से जो है हर एक चीज़ को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। एक अच्छी पेरेंटिंग जो है बच्चों को एक सही दिशा देती है, सही भविष्य के लिए प्रेरित करती है, लेकिन अगर वहीं एक छोटी सी गलती हो जाए पेरेंटिंग में तो बच्चे कहां से कहां पहुंच जाते हैं समझ में नहीं आता, और हमें बस एक और सबसे बड़ी परेशानी में डल जाते हैं। तो खैर दोस्तों, ये तो बहुत खास बात है, बहुत ज़रूरी बात है, तो इस पे ध्यान देना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आज यानी कि 5 मई 2026 का दिन है और आज के दिन दोस्तों मैंने कि जैसे कि कहा कि आज के दिन आप सभी मना रहे हैं चाइल्डहुड डिप्रेशन अवेयरनेस डे। इस वर्ष 5 मई को मनाया जाने वाला बाल अवसाद जागरूकता दिवस यानी कि जो आज के दिन आप मना रहे हैं, इस गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों की सुरक्षा और सहायता के लिए बनाया गया था। बचपन की जो छवि हमारे मन में आमतौर पर होती है वो है बच्चों का जीवन से भरपूर होना और खेलने की ललक, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। दुर्भाग्य से बाल अवसाद जैसी समस्याएं भी मौजूद हैं। ये एक बहुत ही गंभीर सा मुद्दा है जिस पर माता पिता, देखभाल करने वालों और शिक्षकों को चर्चा करनी चाहिए। दोस्तों अवसाद दुनिया भर में अन्य बीमारियों का एक प्रमुख कारण है और ये सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO अवसाद को एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट के रूप में वर्गीकृत करता है, लेकिन बच्चों पर इसका प्रभाव और भी विनाशकारी और गंभीर हो सकता है जिससे लड़के लड़कियों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। दोस्तों बच्चों के सामने जो माहौल हम क्रिएट करते हैं, कई बार क्या होता है, ये तो खैर अवेयरनेस से जुड़ी बात है, ये बहुत ही ज़रूरी है ये भी, लेकिन अगर हम नॉर्मल सी छोटी छोटी सी बातों पर नज़र डालें या थोड़ा सा भी उस पर ध्यान दें, गहराई से जानने की कोशिश करें, तो आजकल पेरेंट्स में जो है लड़ाई झगड़े आम बात है। छोटी छोटी सी बातों को लेकर जो है बड़े बड़े इश्यूज जो है वो बन जाते हैं। तो ये जो लड़ाई झगड़े हम

तो ये जो माहौल है ये कहीं ना कहीं बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गंभीर हो जाता है और ऐसे में वो जो है अवसाद का जो है एक पार्ट बन जाते हैं। तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं ना, कहने सुनने के लिए हमें छोटी लगती हैं, क्योंकि उस समय हमें ना ऐसा लगता है कि हमारे साथ बुरा किया है, और चाहे किसी भी वजह से रहा हो, कोई भी बात रही हो, तो हमारे मन में ये सोच बन जाते कि हम भी इनके साथ कुछ अच्छा नहीं करेंगे और हम बच्चों को भी इनसे बात नहीं करने देंगे, बच्चों को भी इनके साथ घुलने मिलने नहीं देंगे। तो ये कहीं ना कहीं हम खुद के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में वो बच्चे बड़े होंगे, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल छोटे ही रहेंगे। तो क्या पता उस स्टेज पे आप हों, तो इन बातों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को संभालने का समय, बच्चों की अपब्रिंगिंग जो होती है वो सही वाली, वो बचपन में ही होती है। अगर उस समय आपने थोड़ा सा समय बच्चों को दे दिया, संभाल लिया, तो शायद पूरी ज़िंदगी आप उस बात पे गर्व महसूस करें। लेकिन अगर आपने अपनी मौज मस्ती के लिए, अपने सुविधाओं के लिए बच्चों को नज़रअंदाज किया, तो कहीं ना कहीं बच्चे आपको किस तरह से नज़रअंदाज करेंगे या उसका किस तरह से खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा वो आप नहीं जानते हैं। ये जानते भी होंगे तो फिर समय हाथ से निकल चुका होगा। तो इन बातों पे ध्यान दीजिए और इस पे गौर कीजिए। फिलहाल आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत आप सभी के साथ।

दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बलमा फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में आप सभी तक पहुंचाया आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका ने। दोस्तों, अगर सांप के पास जहर नहीं होता तो दुनिया उसे रस्सी की तरह इस्तेमाल करती। इसका मतलब ये नहीं कि आपको डर फैलाना है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि सम्मान वहाँ मिलता है जहाँ आपकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं। जब लोगों को ये लगने लगता है कि आप कमज़ोर हैं, कि आप कभी विरोध नहीं करेंगे, कि आपके व्यवहार का कोई परिणाम नहीं होगा, तब वे आपका शोषण करना शुरू कर देते हैं। इसलिए नहीं कि वे आपसे नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें नतीजों का कोई डर नहीं होता। याद रखिए, शांत होना कमजोरी नहीं है, लेकिन अपनी सीमाएं तय ना करना कमजोरी है। आपको किसी को काटने की जरूरत नहीं है, बस दुनिया को ये एहसास दिलाना है कि आप कमजोर नहीं हैं। आप अपनी अहमियत और आप अपनी हिम्मत से हर एक सिचुएशन का सामना डट के कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद को पहचानना भी तो जरूरी है ना। जी दोस्तों, अक्सर कुछ लोगों की ये हैबिट होती है, जब हम कुछ सिचुएशंस में खुद शांत हो जाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं जवाब दे दें तो शायद उनमें और हम में फर्क क्या रह गया, तो इस बात के लिए हम शांत हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये कमजोर हैं। तो हर चुप्पी और हर शांति कमजोरी नहीं होती, कई बार वो हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, सिचुएशन के हिसाब से, माहौल के हिसाब से और तरीके से। जरूरी नहीं है कि जिसने जैसे आपके साथ किया उसी जवाब में आप उसे पलट कर जवाब दें, ये बात मायने नहीं रखती। मायने रखती है हमारी सोच, हमारी मानसिकता, हम किस तरह से बातों को मैनेज करते हैं, सिचुएशंस को मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से बच्चों की जिंदगी भी होती है। अगर बच्चों की जिंदगी में हम उनकी तरह बच्चे बन जाएंगे तो फिर हम कैसे उन्हें समझ पाएंगे। तो हमें एक मैच्योरिटी के साथ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर एक चीज को, हर एक सिचुएशन को मैनेज करना होता है। हम अपने हिसाब से बच्चों को भी नहीं वो कर सकते कि हम जैसे जितने बड़े हम हैं हम बच्चों को से भी वही एक्सपेक्ट करें कि वो भी उतने बड़े मैच्योरिटी के साथ डिसीजंस लें। बच्चे हैं, बचपना होता है, लेकिन हमें मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है। तो ये सारी बातें एक तरह से रिलेट करती हैं। आपको ऐसा लग रहा हो कि कहीं रिलेट नहीं करें, लेकिन दोस्तों, बच्चों का जो बचपना है ना, वो बहुत ही मासूम सा होता है, तो उसे संभालना भी मासूमियत से पड़ता है। तो यही रिलेटेड बातें कई बार बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। खैर दोस्तों, सोचिए, विचारिए और इस पे ज़रूर सोचिए, क्योंकि सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आज नहीं सोचा तो शायद कभी नहीं सोच पाएंगे। तो फिलहाल एंजॉय कीजिए प्यारा सा गीत।

तो सो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के ढेर सारी बातों के साथ। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और समय है एक छोटे से अंतराल का। तो मिलते हैं आप सभी से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी इसी तरह से एंजॉय कीजिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन, माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी, नॉन एसी, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से। और बहुत ही खास बात हम कर रहे हैं दोस्तों, अस्थमा डे भी आज के दिन आप सभी मना रहे हैं, और साथ ही डिप्रेशन अवेयरनेस डे, चाइल्डहुड डिप्रेशन अवेयरनेस डे भी आप सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सिर्फ सेलिब्रेशन तक सीमित नहीं रहना है, हर बार मैं ये बात बोलती हूँ दोस्तों आप सभी के साथ, चाहे कोई भी दिन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी अहमियत को जानिए, उसकी खासियत को जानिए, और जो उद्देश्य उसके पीछे का होता है, लोगों को जागरूक करना, सिर्फ इस बात के लिए जागरूक नहीं करना कि आज के दिन कौन सा खास दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या खास है, सिर्फ ये नहीं, बात ये होनी चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, क्यों जरूरी है हमें इस दिन को मनाना, जो दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उस बात में कितनी एक सच्चाई है, क्या हम उस पे कायम हैं या नहीं है। तो दोस्तों, रील्स बनाने के लिए या सिर्फ फोटोज क्लिक करने के लिए या दिखाने के लिए हम हर चीज तक पॉसिबल रहते हैं, लेकिन बातों को गहराई से जानना, उसे अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व करना, ये हम सिर्फ किताबों तक सीमित रहने देते हैं या फिर एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। तो जब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे, जिंदगी हमें यूं ही भगाती रहेगी और हम परेशान होते रहेंगे कि आखिर हम जा कहां रहे हैं। तो फिलहाल तो आप सभी जा रहे हैं इस प्यारे से सफर में अपने मनपसंद रेडियो गुंजन की ओर। तो बिल्कुल दोस्तों, भटकना हमें बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो जिंदगी की दौड़ है या फिर इस प्यारे से मनोरंजन के सफर की दौड़ है। तो हमें फिर से वापस आना है अपने एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने इंजॉय किया, और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी इंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी जानकारियों के साथ। तो फिलहाल दोस्तों आप सभी को बता दें, जो कि आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड अस्थमा डे की, और साथ ही बात कर रहे हैं चाइल्डहुड डिप्रेशन अवेयरनेस डे के बारे में। दोस्तों बच्चों में अवसाद के प्रति जागरूकता और उन्हें भावनात्मक सहायता प्रदान करना जो है मेन उद्देश्य आज के दिन का रहता है। और इसके लक्षण क्या रहते हैं, क्योंकि मेन बात यही है, जो भी बीमारी होती है, जो जब हम घर कर जाती है, तो जब हमें सिम्टम्स का पता चल जाता है तो उस पर हम काम करना शुरू कर देते हैं। कई बार हम नज़रअंदाज भी करते हैं, लेकिन जब नज़रअंदाज करते हैं तो उसका हमें बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ता है। तो अवसाद की हम बात करें तो उसका जो है एक बच्चों में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, जब वो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा चिड़चिड़ापन जो है शो करते हैं बात बात पे, या फिर उदास रहते हैं, बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, पसंद के कामों में रुचि ना लेना, और सामाजिक अलगाव, सोसाइटी से कटना, या फिर जो चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है लेकिन अचानक से वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो यही सारे सिम्टम्स हैं कि वो कहीं ना कहीं अवसाद की ओर जा रहे हैं, यानी कि डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। तो पेरेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है, ऐसी चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, तो उन्हें अपने बच्चों पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन इस भाग दौड़ भरे समय में क्या अपने बच्चों की इन छोटी छोटी सी बातों पर आप नज़र दौड़ा पाते हैं? क्या आप उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं? शायद बहुत से पेरेंट्स ना में इसका जवाब दें, क्योंकि समय नहीं है। शाम को जाकर बस थोड़ा सा उनका होमवर्क देख लिया कि कर लिया या नहीं किया, कई बार तो वो भी टाइम नहीं होता है। तो ऐसे में फिर बच्चे कहीं ना कहीं पेरेंट्स से भी कटते हैं और अपनी ज़िंदगी से भी कटते हैं। तो ये दिन याद दिलाता है कि अवसाद सिर्फ वयस्कों को नहीं बल्कि बच्चों को भी प्रभावित कर सकता है। जी दोस्तों, इसके बारे में और भी जानेंगे। अभियान जो है बच्चों के लिए अलग अलग तरह से चलाए जाते हैं, लेकिन हम उसमें भी अपने आप को पार्ट नहीं बनाते, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है, ज़रूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

मुझसे इसी प्यारे से गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और कार्यक्रम में बातचीत से रुख करते हैं जानकारियों की ओर। तो आइए दोस्तों जानते हैं एक बहुत ही खास जानकारी आप सभी के लिए 91.2 MHz से। दोस्तों मणिकर्ण घाटी आने वाले सैलानियों को अब कसोल स्थित साडा वैरियर पर प्रति वाहन 50 रुपये अतिरिक्त राशि देनी होगी। 13 सीटर ट्रैवलर का शुल्क 100 रुपये बढ़ाकर 300 से 400 रुपये किया गया है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने इस राशि को बढ़ाया है। अप्रैल से इस राशि को वसूलना भी शुरू कर दिया गया है। जी दोस्तों, ये शुल्क बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को अपनी निजी वाहनों और टैक्सी ट्रैवलर चालकों पर ही लागू होगा। पहले मणिकर्ण आने वाले पर्यटकों की कार और टैक्सियों से मात्र 100 रुपये शुल्क लिया जाता था, अब 150 रुपये कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार मणिकर्ण घाटी में हर साल पर्यटकों के करीब 1 लाख छोटे वाहन आते हैं। इसमें करीब 80,000 निजी और लगभग 20,000 टैक्सियां शामिल होती हैं। वहीं घाटी में पूरे साल में हजारों की संख्या में 13 सीटर ट्रैवलर प्रवेश करती हैं। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सचिव घनश्याम शर्मा ने कहा कि बाहरी राज्यों के पर्यटकों की निजी कारों और टैक्सियों के शुल्क में 50 रुपये जबकि 13 सीटर ट्रैवलर का 100 रुपये शुल्क बढ़ाया है। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खास जानकारी, क्योंकि जब भी वहाँ घूमने के लिए जाए तो ये बहुत ज़रूरी है जानना। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हमें जानकारी नहीं होती है तो हम वहाँ पर फिर आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं। तो अगर पहले से जानकारी हो तो फिर हम अवेयर होंगे उसके बारे में, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। खैर, दुख तो होता ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसी ही है ज़िंदगी। तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को मनोरंजन की ओर। एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और समय बस रफ्तार के साथ बढ़ता जा रहा है उस मुकाम की ओर जहाँ आप भी नहीं चाहते और शायद मैं भी नहीं चाहती हूँ, पर क्या करें दोस्तों, समय है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। तो आइए जल्दी जल्दी से लेकर चलते हैं आप सभी को एक और जानकारी की ओर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की किशोर न्याय प्रणाली को अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी इन नियमों का उद्देश्य विधि का उल्लंघन करने वाले और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नए नियमों के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिला में एक या अधिक किशोर न्याय बोर्ड गठित किए जाएंगे। बोर्ड में एक न्यायिक मैजिस्ट्रेट के साथ दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बच्चों से जुड़े क्षेत्रों में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव जरूरी किया गया है और बच्चों के लिए अनुकूल माहौल अनिवार्य किया है। बोर्ड की कार्यवाही किसी भी स्थिति में अदालत या जेल परिसर में नहीं होगी। इसके बजाय ऐसे स्थानों का चयन किया जाएगा जहां बच्चे सहज महसूस करें। सुनवाई के दौरान वातावरण को डर मुक्त रखने के लिए बोर्ड के सदस्यों को विशेष तौर पर बच्चों के अनुकूल व्यवहार अपनाने के निर्देश दिए हैं। जी दोस्तों, बहुत ही खास जानकारी आप सभी के लिए और आप सभी तक पहुंचाई गई है गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम के माध्यम से। तो आइए इसी खास जानकारी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों दिल जब घबराए तो खुद को एक किस्सा सुना देना, जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो मुस्कुरा देना। आसानी से सब कुछ हासिल हो तो उसकी कद्र कहाँ, जरूरी है कुछ पाने के लिए कुछ गवा देना। जाहिर है मुसीबतों में साथ कोई अपना नहीं रहता, चुप रहना बेशक आंख से एक कतरा बहा देना। शिकायतें सिर्फ दिल मैला करती हैं और कुछ नहीं, आसान है गले मिलकर कभी सब कुछ भुला देना। बीते हुए दौर की बातें याद कर क्या हासिल प्यारे, क्या जरूरी है कल की याद में अपना आज को सजा देना। कुछ कमियां हम सब में हैं ये जानते हैं हम, बहुत बड़ी बात है किसी के ऐब को बेवजह छुपा देना। जी दोस्तों, ये बहुत ही प्यारी प्यारी सी बातें, छोटी छोटी सी बातें, लेकिन हम अपने घमंड के साथ जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ नज़र अक्सर नहीं आता। तो दोस्तों

समय के इस रफ्तार के साथ चलते चलते इस प्यारे से सफर में हम आप पहुंचे हैं उस मुकाम पे जहां आप सभी से बिछड़ने का समय नजदीक आ जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को आज का ये प्यारा सा सफर जरूर पसंद आया होगा और अब समय है आप सभी से अलविदा लेने का। तो दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात एक नई बातचीत नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान पर रुचिका, ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान, तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, CUET और NDA के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117019. आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।
1: अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कष्ट जानलेवा है, तंबाकू आज ही छोड़ें।
2: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, मिलाते नहीं, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं, ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान।
3: सुनो,
4: क्या है
3: ये सूट? कैसा है
4: ये? तो बहुत अच्छा है।
3: अच्छा है?
4: हाँ।
3: लेकिन ये 20,000 रुपए का है।
4: बस 20,000 था? आपको पता है आजकल इतने हैवी सूट तो 30,000 से कम में नहीं आते, ये तो आपको बड़े सही रेट पे मिल रहे।
3: अच्छा, ले लो फिर।
4: हाँ हाँ, ले लो ले लो।
3: चलो तुम कहती हो तो ले लेता हूँ। वैसे भी इस राखी पे मैंने दीदी को कुछ भी नहीं दिया।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊं रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है बेटियों के लिए, बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 CCTV, AC नॉन AC अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, JEE, CUET और NDA के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सेलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।
1: अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कष्ट जानलेवा है, तंबाकू आज ही छोड़ें।
2: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं, ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान।
3: सुनो,
4: क्या है
3: ये सूट कैसा है?
4: ये तो बहुत अच्छा है।
3: अच्छा है
4: हाँ,
3: लेकिन ये 20,000 रुपए का है।
4: बस 20,000 का? आपको पता है आजकल इतने हैवी सूट तो 30,000 से कम में नहीं आते, ये तो आपको बड़े सही रेट पे मिल रहे।
3: अच्छा ले लो फिर।
4: हाँ हाँ ले लो ले लो।
3: चलो तुम कहती हो तो ले लेता हूँ। वैसे भी इस राखी पे मैंने दीदी को कुछ भी नहीं दिया।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगा हर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, और मेरे साथ हैं
1: रूमा
0: जी। तो हम हाजिर हो गए हैं दोस्तों आप सभी के लिए, आप सभी का बहुत ही खास कार्यक्रम लेकर, जिसका कि आप सभी को हर हफ्ते इंतजार रहता है बेसब्री से, क्योंकि बहुत ही खास कार्यक्रम है और खासकर आप सभी का अपना कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम का नाम बता दें।
1: बिल्कुल रुचिका, जब तक कार्यक्रम का नाम नहीं बताएंगे आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे हम
0: जी।
1: तो दोस्तों, कार्यक्रम है मेरे हौसलों की उड़ान, और हमारे हौसलों में उड़ान आती है आप सबके आने से। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज हम इस कार्यक्रम की। और आज भी रुचिका, हम एक बहुत ही दिलचस्प सा मुद्दा लेकर दोस्तों के साथ आए हैं
0: जी।
1: और आपको तो पता है, वैसे भी ये कार्यक्रम वेस्ट है, विशेषता महिलाओं और बच्चों के लिए, अधिकारों पे के लिए। तो आज भी हम बच्चों के संबंधित कुछ अधिकारों के बारे में जागरूक करेंगे अपने दोस्तों को
0: जी। बिल्कुल दोस्तों, वैसे तो हमारी हर कार्यक्रम में यही उम्मीद रहती है कि आप जरूर हमारी बातों से कुछ ना कुछ सीखते हैं, कोई ना कोई जानकारी जो है आप सभी तक जरूर पहुंचती है, क्योंकि हम आप सभी के लिए ही बहुत सारी ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं, जिससे कि आप अपनी जिंदगी में जो आपके अपने अधिकार हैं उनसे रूबरू हो सकें, अपने लिए स्टैंड ले सकें, अपने लिए आवाज उठा सकें। क्योंकि जब तक हमें चीज़ों का पता नहीं होगा, जो जो अधिकार हमारे लिए हैं उनका नॉलेज हमें नहीं होगा, तो हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। या तो कई बार क्या होता है रूमा जी, कि हम डर सहम कर जो है चुप रह जाते हैं, पर जब हमें पता है कि हमारा पूरा राइट है और हमें कोई रोक नहीं सकता है इस चीज़ के लिए, या तो हमारे साथ जो भी अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो लोग हमारा साथ देंगे। कोई दे ना दे, पर हम ही बहुत हैं इस चीज़ के लिए।
1: बिल्कुल, हमें खुद ही अपने लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं
0: जी।
1: और वैसे भी रुचिका जी, हमेशा बात आती है ना कि कई बार हम सोचते हैं महिलाओं के अधिकार हैं, पुरुषों के अधिकार हैं
0: जी,
1: लेकिन जब बात बच्चों की आती है तो हमारे मन में आता है बच्चों के लिए क्या अधिकार होंगे।
0: बिल्कुल, क्योंकि बच्चे तो एक अलग से
1: हाँ, और माता पिता के संरक्षण में पल रहे हैं, माता पिता उनको सब कुछ दे रहे हैं, तो क्या बच्चों के लिए भी क्या कोई विशेष कानून है
0: जी। तो रूमा जी, होने भी चाहिए, क्योंकि अगर हाँ? आज के समय की बात करें दोस्तों, तो पहले भी ये बात मैंने आप सभी से कही थी कि आज के समय में बच्चे अपने घर पे ही सेफ नहीं है, तो फिर वहाँ पर उन अधिकारों की जरूरत पड़ जाती है।
1: बिल्कुल, और अधिकार तो सबके लिए हैं, बराबर हैं
0: जी।
1: और हमारी संसद ने भी एक विशेष अधिकार बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए बनाया है। बेशक हमारे बच्चे घरों में सुरक्षित हैं, हम उनकी देखभाल के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी जीवन भर की कमाई हम अपने बच्चों की खुशियों के लिए निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमारे सामने इस तरह की दिक्कतें आती हैं, बच्चे किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं। और ज़्यादातर आप देखिए, आजकल का जो समय है रुचिका, वो बहुत चेंज हो गया है, बच्चे हमारे अपराध की ओर भी जा रहे हैं
0: जी।
1: और इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कई जगह गरीबी इसका कारण है, कई जगह ओवर प्रोटेक्शन जो है, हम बच्चों को हद से ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट करते हैं
0: जी।
1: ये भी अपराधों का कारण हो सकता है। कई बार हमारे आस पड़ोस में, अपने घर में हमारा खुद का रवैया बच्चों के सामने हिंसात्मक हो जाता है, माता पिता गाली गलौज कर रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है, हमेशा कलह कलेश पड़ा रहता है, तो ये सब चीजें देख के भी बच्चों के अंदर अपराध की प्रवृत्ति आती है, उनके अंदर जो गुस्सा इकट्ठा होता जाता है, क्योंकि बच्चे जो है, मुझे लगता है कि कई मामलों में बच्चे जो हैं वो अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं
0: जी।
1: घर में माता पिता अगर लड़ाई कर रहे हैं, आस पड़ोस में कुछ ऐसा गलत हो रहा है, हम बच्चों के सामने नशा कर रहे हैं, इन सब चीजों का बच्चों के ऊपर कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही है
0: जी। बिल्कुल,
1: और जब बच्चे अपनी बात कहीं नहीं कर पाते हैं तो उस फ्रस्ट्रेशन को लेकर वो बाहर जाते हैं, गलत काम करते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलके, या तो नशे की गिरफ्त में आ जाएंगे, या फिर वो मारपीट या और तरह की, आपने तो सुना होगा आजकल बच्चे भी हिंसा और बलात्कार, मर्डर जैसे केसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं
0: जी।
1: तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वाल मन पे हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, उन चीजों का भी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में सरकार का एक बहुत ही बढ़िया प्रयास है कि बच्चों को जो भी कानून बच्चों की फेवर में बनाए गए हैं, बच्चों के हित में बनाए गए हैं, उनका मकसद एक ही है, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। अगर कोई बच्चा अपराध भी करता है तो बच्चा दोबारा से उस अपराध में संलिप्त ना हो पाए और उसको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, क्योंकि जब कोई बच्चा किसी अपराध में संलिप्त हो जाता है तो फिर उसका, आपने देखा है ना, अपराधी एक के बाद दूसरे अपराध करता है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो ऐसे में उसको दोबारा वो अपनी उस बात को रिपीट ना करे, उसके मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने कुछ इस तरह के एफर्ट्स किए हैं, कुछ प्रयास किए हैं जो हमारे बच्चों को अपराध की दुनिया में ले जाने से रोकते हैं। और इसी कड़ी में सरकार ने 2000 में एक एक्ट पारित किया था, किशोर न्याय अधिनियम, जिसका मेन फोकस जो था बच्चों के समुचित विकास पे था, बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना था, बच्चों का पुनर्वास करना था, उन बच्चों का जो अपराध में कहीं ना कहीं मुख्य धारा से छूट कर कहीं ना कहीं खो गए हैं, गुम हो गए हैं, उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना मुख्य लक्ष्य था इसका।
0: जी बहुत ही सही बात रुमा जी आपने कही है। कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं अपराध की ओर बढ़ते जा रहे हैं और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं घर से ही होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, और ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि जब भी कोई अगर आपस में भी लड़ाई कर रहे हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि बच्चे उनके सामने हैं, वो ये समझते हैं, या तो कई बार हम क्या करते हैं बच्चों को उसी वे में समझाते हैं कि नहीं आपको इनके साथ बात नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना है, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, मतलब पूरी कहानी जो है वो सुना रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं उस बात का प्रभाव जो है उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है और बच्चे उन चीजों को सीखते हैं, क्योंकि बच्चा अपने आसपास के वातावरण से बहुत कुछ सीखता है। तो जो आप बच्चों के सामने जो भी बातें रखेंगे या जो भी बिहेवियर उनके सामने आप प्रस्तुत करेंगे तो वो ऑब्वियसली उसका अनुकरण करेंगे, क्योंकि बच्चे अनुकरण करते हैं, हर बात का अनुकरण करते हैं। तो रूमा जी मुझे लगता है बातें हमने ऐसे ही शुरुआत कर दी है, पर थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं मुझे लगता है।
1: एक थोड़ा सा अगर और ये ब्रेक थोड़ा संगीतमय हो तो और अच्छा लगेगा।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि आते ही हम बस शुरुआत कर देते हैं और बेचारे अपने दोस्तों के बारे में नहीं सोचते हैं।
1: नहीं नहीं ऐसा तो... नहीं है, सोचते हम उनके बारे में, पर क्या है ना हमारी बातें ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि आज ही हम सब कुछ अपने दोस्तों को बता दें, ताकि अगर कोई उनके आसपास इस तरह की परेशानी में हो तो वो समस्या का हल उसको मिल जाए। तो मैं आगे यही कहूंगी, बातों को विराम दूंगी और हम एक गाना सुन लेते हैं।
0: जी बिल्कुल, तो आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं प्यारे से गीत के साथ और बढ़ते हैं कार्यक्रम में इसी के साथ।

0: तो दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान में। और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और रूमा गुलेरिया जी के साथ। तो दोस्तों, बहुत सारी जानकारियां आप सभी तक पहुंचानी होती हैं, तो कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं किशोर न्याय अधिनियम के बारे में।
1: जी,
0: तो रूमा जी, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और क्योंकि बहुत सारी बातें करनी होती हैं और फिर समय का पता नहीं चलता है। और वैसे भी दोस्तों, आप सभी जानते हैं समय जो है वो रेत की तरह होता है, जो कि हाथ से ऐसे फिसलता जाता है और कब फिसल जाता है वो पता ही नहीं चलता।
1: बिल्कुल, और तो हमने इस रेत को फिसलने नहीं देना है
0: जी।
1: कोशिश करेंगे अधिक से अधिक जानकारी हम अपने दोस्तों तक पहुंचाएं
0: जी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं रूमा जी, किशोर न्याय अधिनियम है क्या और इसके अंतर्गत बच्चा जो है वो कौन है, मतलब इसके अंतर्गत हम किसको बच्चा मानेंगे।
1: बिल्कुल रुचिका जी, किशोर न्याय अधिनियम जो है वो अपने आप

0: माता पिता हैं लेकिन सक्षम नहीं हैं वो अपने बच्चों की देखभाल कर सकें, उनकी परवरिश कर सकें। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनके माएँ हैं लेकिन पिता का स्वर्गवास हो चुका है लेकिन उन बच्चों की देखभाल वाला कोई नहीं है, भीख मांगने वाले बच्चे, इसी के साथ साथ नशे की जद में आए हुए बच्चे जो नशों का शिकार हो गए बच्चे हैं वो हैं। ये वो बच्चे हैं जो चाइल्ड इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन के अंतर आते हैं। इन बच्चों को विशेष देखभाल की ज़रूरत है, इसमें अपाहिज बच्चे भी हैं। दूसरा इसका इसी अधिनियम का दूसरा भाग है जो CCL को ध्यान में रखकर पारित किया गया है। CCL यानी वो बच्चे जो विधि का उल्लंघन करने वाले हैं, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, या फिर वो बच्चे जो विधि के दायरे में आते हैं। अब चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वो बच्चे हैं जो बच्चे जिन्होंने कोई क्राइम किया है, छोटा मोटा अपराध किया हो, चाहे चोरी हो, लड़ाई झगड़ा हो, मोटर एक्सीडेंट्स के केसेस हैं। और आजकल आपने देखा है छोटे बच्चे घर में, अगर माता पिता भी नहीं रोकते हैं, हमें अच्छा लगता है हमारा बच्चा कुछ दूसरे बच्चों से अलग कर रहा है, तो हम बहुत जल्दी जल्दी अपने छोटे बच्चों को सब कुछ सिखा देना चाहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उसमें आजकल ड्राइविंग का जो बच्चों में क्रेज़ है, तो जैसे ही 15-16 साल का होता है, 14 साल का भी है, हमारे घर में व्हीकल है तो हम अपने बच्चों को सिखा देते हैं। सिखाना बुरी बात नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन उस व्हीकल को लेकर सड़क पे आना विदाउट लाइसेंस, बिना किसी प्रिकॉशंस के, बिना किसी सावधानी के, हमारे बच्चे सड़कों पे आते हैं और फिर बच्चों में, देखो ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं,
1: बचपना है, बिल्कुल
0: बिल्कुल, उनको सही और गलत की पहचान बिल्कुल नहीं है। ऐसे में वो बच्चे बहुत तेज स्कूटी बाइक या कुछ भी जो भी व्हीकल है चला रहे हैं, सड़क में जब चलते हैं तो अपनी जान को तो जोखिम में डालते ही हैं, साथ ही में और राहगीरों की जान भी जोखिम में आती है
1: जी।
0: इस तरह के बच्चे भी हैं और इसी तरह जो दायरे में आते हैं विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के साथ, वो बच्चे भी हैं जो विधि के दायरे में आते हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कोई क्राइम देखा है। आपने सुना होगा कि जब भी कोई क्राइम होता है तो गवाहों की ज़रूरत पड़ती है, और गवाह वही होते हैं जिन्होंने क्राइम देखा है। वो बच्चे भी इसमें शामिल हैं, उनकी प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखा गया है। जैसे मानो किसी बच्चे ने कोई गलत काम होते हुए देख लिया, मर्डर होते हुए देख लिया, तो उसकी गवाही बहुत अहम है, तो उस बच्चे की प्रोटेक्शन का भी सरकार बहुत ध्यान रखती है। इसके साथ साथ यौन अपराधों से जो पीड़ित बच्चे होते हैं, रेप विक्टिम्स हैं या किसी भी प्रकार के पीड़ित बच्चे, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। यही किशोर न्याय अधिनियम की विशेषता है कि इस अधिनियम में बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है, उसको किशोर की तरह, एक व्यसक व्यक्ति की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। आपने देखा होगा जब कोई बड़ा व्यक्ति अपराध करता है तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, उसके साथ इंटरोगेशन होता है, बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं उससे हासिल की जाती हैं, उसके साथ कई बार आपने सुना होगा 3rd degree टॉर्चर भी होता है, लेकिन बच्चों के मामले में ये सब नहीं होता। जब भी कोई बच्चा विधि का उल्लंघन करता है, किसी कानून को तोड़ता है या कोई भी अपराध करता है, तो उसको बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है। पुलिस उसको एकदम से अरेस्ट नहीं कर सकती है, इसमें भी अलग अलग पहलू इसके हैं। बच्चों की अरेस्ट के लिए स्पेशल जुविनाइल पुलिस यूनिट है जो बच्चों के बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, उसको अपराधी की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, उसको सामान्य जेल में नहीं रखा जाएगा। तो ये बहुत सारी विशेषताएं इस अधिनियम के तहत थी और इन सब का मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि बच्चा अगर उससे गलती, वैसे भी हम नहीं मानते हैं कि वो अपराधी है, इस अधिनियम के तहत बच्चे को बाल अपचारी बोला जाता है जिसने अपराध किया है
1: जी।
0: और अगर बाल अपचारी कोई ऐसा, पुलिस उसको अरेस्ट तो करते ही नहीं है, जब भी इस तरह का बच्चा कोई हमारे सामने आता है तो उसे विशेष पुलिस इकाई के माध्यम से सारे मामले की छानबीन की जाती है, और अगर बच्चे को कहीं शेल्टर में रखना पड़ता है तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन होम है, जो बच्चों को ऑब्जर्वेशन होम में बच्चे को रखा जाता है। मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बच्चे की एजुकेशन बीच में नहीं रोकी जाती है, वो जो कुछ भी करता है या करना चाहता है उसको पढ़ाया लिखाया जाता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि अगर बच्चा किसी अपराध में संलिप्त हो गया है तो लोग उसको विक्टिमाइज ना करें, उसको क्रिटिसाइज ना करें, किसी भी तरह से उसको प्रताड़ित ना करें, टॉर्चर ना करें, कल को उसका पुनर्वास हो,

0: और गंभीर अपराध अगर बच्चे ने किया है तो उसकी पूरी तरह से ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसका कौशल विकास किया जाता है ताकि जब भी वो ऑब्जर्वेशन होम से सुधार गृह से वापस आता है तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और दोबारा उसको अपराध की ओर जाने का मौका ना मिले।
1: बिल्कुल सही कहा रूमा जी ने, क्योंकि दोस्तों अक्सर क्या होता है, बच्चे होते हैं और बच्चों के दिमाग पर जो है बहुत जल्दी किसी भी बात का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। तो जैसा कि रूमा जी ने कहा कि जब भी कोई बच्चे से अगर इनकेस कुछ गलत हो भी जाता है तो लोगों का क्या होता है कि सीधे उन्हें ब्लेम पे आ जाते हैं, या तो उन्हें उस तरीके से एक तरह से हम बच्चों को बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा अगर उस चीज़ से बाहर निकलना भी चाहता है तो वो उन बातों को सुन के फिर से उसी चीज़ में, या तो उसके अंदर एक डर सा बन जाएगा, वो लोगों के साथ जो है बात नहीं कर पाएगा, सोसाइटी के साथ वो नजरें नहीं मिला पाएगा।
0: बिल्कुल,
1: तो वहाँ पर हम लोगों का एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि अगर बच्चा वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसको सपोर्ट की जरूरत है, तो हमें बच्चे का सपोर्ट बनना है, ना कि एक तरह से उसे क्रिटिसाइज करना है।
0: बिल्कुल, और देखो ना रुचिका, हमारे संविधान की ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे बच्चों को खुशहाली के लिए, बच्चों के विकास के लिए अलग अलग तरह के एफर्ट्स किए जा रहे हैं। जब हमारे कानून बच्चों की फेवर में है तो उनके विकास के लिए या उनको उन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए बनाए गए हैं, तो हम लोगों को भी मिलजुल कर एफर्ट करने चाहिए। अगर हमारे आसपास किसी बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो बार बार उस बच्चे को उस गलती का एहसास ना करवा कर उसको समझाया जाए, उसको उस दायरे से बाहर निकाला जाए ताकि वो भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह विकास हो उसका, और वो भी एक फ्रूटफुल जो अपना दे सकता है इस सोसाइटी के लिए वो करने के लिए सक्षम हो सके।
1: बिल्कुल, क्योंकि कई बार क्या होता है, अब बच्चों को तो खैर एक अलग बात है, अगर बड़ों के साथ ही ऐसी कोई घटना हो जाए, या नॉर्मल सी बात अगर हम बोलें कि हमसे ही कोई गलती हो जाए और बार बार हमें पेरेंट्स जो है उस चीज़ के लिए बोलेंगे, तो फिर हमारे मन में जो है ना एक डर भी होता है, कई बार होता है कि नहीं मेरे से ये गलती हो गई है तो मैं इसे सुधारना चाहता हूँ। पर जब वो बार बार उस चीज़ के लिए हम बच्चे को बोलते हैं कि नहीं तूने ही ये गलती की है, या तेरी वजह से हम ये फेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में वो बातें चल रही होती हैं और उसी वजह से जो है फिर क्राइम बढ़ते जाते हैं और बच्चा जो है एक तरह से एक निडर भी हो जाता है कहीं ना कहीं कि नहीं सुनना तो मुझे है ही।
0: बिल्कुल, जैसे तो वहाँ ढीठ हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, ढीठपन जो है बच्चों में देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं फिर हम बच्चे को गलत डायरेक्शन में भेजने के लिए जिम्मेदार जो है वो हम खुद ही हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, वैसे भी बच्चे कहते हैं ना एक छोटे से गमले के पौधे की तरह हैं।
1: बिल्कुल,
0: जिनको हमें बार बार खाद भी देनी पड़ती है, पानी भी देना पड़ता है, जिस तरह से हमें गमले के पौधे की देखभाल करनी पड़ती है अपने बच्चों की भी वैसे ही देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन एक चीज़ और, अगर गमले में ज़्यादा पानी और खाद पड़ जाए तो वो खराब भी हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो एक बैलेंस जो है बच्चों के परवरिश में पेरेंट्स को बना के जो रखना पड़ता है वो बिल्कुल रखना चाहिए। ओवर प्रोटेक्शन भी सही नहीं है। कई बार पेरेंट्स ऐसा भी करते हैं कि हम लोग आजकल आपको पता है सभी वर्किंग है,
1: बिल्कुल
0: माता पिता काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं और होता क्या है कि हमारे पास बच्चों की बात सुनने का समय नहीं होता। हम घर आएंगे, अपना काम करेंगे, टीवी देखेंगे, लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे, सगे संबंधियों से बात करेंगे, लेकिन बच्चा आकर हमसे कुछ कहना चाहता है तो हम उसको
1: डांट डपट के
0: पीछे या बाद में बात करना ये बोल देते हैं। हमें थोड़ा सा समय अपने बच्चों की बात सुनने के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने बच्चे की बात सुन सकते हैं तो हो सकता है कि उसके मन में जो कुंठाएं, जो समस्याएं लेके वो हमारे सामने आया है उनको खुल के बात कर सके और उसका जो दिमाग है वो नेगेटिविटी की ओर ना जाके सकारात्मकता की ओर आए।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि बोलते हैं ना बात करने से जो है हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सलाह जो है वो जरूर मिलती है, और बच्चे अगर पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे तो वो किससे बात करेंगे। और उनको पेरेंट्स का समय दे जो मिलना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने बच्चों को इग्नोर करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, तो वो बाहर किसी गलत सोसाइटी में पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई सुनने वाला तो चाहिए, क्योंकि उनके मन में जो बातें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं तो वो निकालेंगे अपनी कंफर्ट जोन से। और
0: रुचिका आपने देखा होगा जब बच्चे के मन में कोई जिज्ञासा होती है ना, और हम माता पिता या भाई बहन परिवार के सदस्य उस जिज्ञासा को शांत नहीं करते हैं तो बच्चे गलत तरीकों से उस बात की जानकारी के लिए अपने दोस्तों के साथ बात करेंगे या फिर इंटरनेट के माध्यम से उस बात को जानने की कोशिश करते हैं
1: जी। और जब दोस्तों से पता चलेगा तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हर कोई सही राह दिखाने वाला नहीं होता है,
0: और सबके साथ उनके दोस्त भी तो बच्चे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और बच्चों के पास आधी अधूरी जानकारी होती है
1: जी,
0: और आधी अधूरी जानकारी हमेशा ही सही नहीं होती, कई बार हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाती है
1: जी।
0: तो अपने बच्चों के साथ जरूर बैठें, उनकी बात जरूर सुनें।
1: फिलहाल अपनी बातों को थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं।
0: बिल्कुल, और एक गीत जरूर सुनेंगे अभी
1: जी। तो आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं इस प्यारे से गीत को, और वापिस आते हैं इन्हीं प्यारी सी बातों के साथ और मनोरंजन के साथ। अब तक आप एंजॉय कीजिए इस प्यारे से गीत को।

0: दोस्तों 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे हौसलों की उड़ान अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ।
0: जी दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत तो आप सभी ने एंजॉय कर लिया है, अब हमारी प्यारी सी बातों को भी एंजॉय कीजिए। तो आइए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किशोर न्याय अधिनियम के बारे में। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो है क्राइम को किस तरह से परिभाषित किया गया है, किस तरह से इसको अलग अलग श्रेणी में रखा गया है।
1: बिल्कुल रुचिका जी, किशोर न्याय अधिनियम में जो क्राइम है उसको तीन हिस्सों में बांटा गया है। एक है पेटी ऑफेंस, दूसरा है सीरियस ऑफेंस और तीसरा है हीनियस। जो पेटी ऑफेंस हैं वो ऑफेंस हैं जिनमें 3 साल से कम सजा होती है
0: जी।
1: सीरियस ऑफेंस में 7 साल तक की सजा होती है और इससे ऊपर जो सजाएं हैं 7 से आजीवन कारावास या फांसी की सजा, हालांकि बच्चों को इससे मुक्त रखा गया है
0: जी।
1: लेकिन कुछ एक मैटर हैं, जैसे हमने पिछले किसी एपिसोड में बात करी थी पॉक्सो एक्ट की
0: जी।
1: तो पॉक्सो एक्ट में अगर किसी 12 साल से नीचे की बच्ची के साथ रेप होता है तो फांसी की सजा का प्रावधान है, और ऐसे में अगर कोई किशोर भी जिसकी उम्र 17-18 के बीच में है अगर वो भी, तो उसको हीनियस क्राइम में रखा गया है। मतलब वो अपराध जिनकी सजा की इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है वो हीनियस क्राइम में है। इसमें कई प्रकार के अपराध हैं, जैसे यौन अपराध हैं, ड्रग्स से रिलेटेड अपराध हैं, मर्डर या और भी कई प्रकार के केसेस हैं जो जिनकी सज़ा 7 साल से ऊपर होगी वो हीनियस क्राइम में रखे गए हैं।
0: जी रूमा जी, आपने बहुत सही बात कही है कि आप सभी को बता दिया है दोस्तों कि किस तरह से क्राइम को परिभाषित किया गया है और अलग अलग श्रेणियों में जो है उसे बांटा गया है। रूमा जी ने बात की कि नशे में बच्चे क्राइम कर जाते हैं या नशे की ओर चले जाते हैं, तो मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भी पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी
1: होती है,
0: बहुत बड़ी। क्योंकि पता है क्या होता है, जब पेरेंट्स जो है उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं या तो उन्हें किसी बात के लिए प्रेशराइज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में चले जाते हैं, और जब वो बाहर फिर बच्चों के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए हमें नशे का सहारा लेना है।
1: बिल्कुल, और आजकल के युवा तो नशे की ओर जाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम लोगों की, पेरेंट्स की, खासकर बच्चों से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं।
0: बहुत ज्यादा।
1: अगर पड़ोसी का बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो हम अपने बच्चे को प्रेशराइज करते हैं वो भी अच्छा करे, वो भी उन बच्चों से बढ़ के करे। हालांकि देखिए, हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, हर किसी में अपने अपने गुण है, और हम उन गुणों को नजरअंदाज करके ये नहीं सोचते हैं फलां का बच्चा डॉक्टर है तो मेरा भी डॉक्टर बनेगा, हालांकि मेरे बच्चे की सोच कहीं और जाने की है। तो हम अपनी उम्मीदों को भी अपने बच्चों पे थोप देते हैं और ये बच्चे को तनाव की ओर ले जाते हैं, और आज के समय में तनाव हर किसी को है।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों को भी है और
0: बड़ों को
1: पढ़ाई
0: है।
1: का स्ट्रेस है, माता पिता की अपेक्षाओं का स्ट्रेस है, और ये सारी चीजें बच्चों को कहीं ना कहीं अपराध की ओर ले जा रही है। जब बच्चा नशा करेगा तो ऑब्वियस है अपराध करेगा,
0: अपराध करेगा,
1: नशे की पूर्ति के लिए चोरी चकारी भी करेगा,
0: बिल्कुल
1: गुंडागर्दी करेगा, अगर कुछ नहीं होगा तो मारपीट करेगा।
0: और यहाँ पर कहीं ना कहीं पता है क्या होता है रूमा जी, अक्सर पेरेंट्स को पता चल भी जाए, क्योंकि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि हमारा बच्चा जो है नशे में गया है या फिर वो कुछ गलत हैबिट्स में गया है, तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है। पर वहां पर अगर माता पिता इग्नोर कर देते हैं या तो उन्हें पता चल जाता है कि हमारा बच्चा इस गलत आदत में चला गया है, तो कहीं लोगों को पता ना चल जाए, उन्हें बात दबाने के लिए जो है या तो बच्चे को बाहर कहीं भेज देंगे या तो वो मतलब कि खुल के बात नहीं करेंगे
1: बिल्कुल,
0: बच्चे से।
1: बिल्कुल, और ये जो चीजें हैं ये अपराध की और बच्चे को बढ़ाती है, उसका जो स्ट्रेस है और बढ़ता है। एक तो पेरेंट्स जब अपने आप से दूर कर देते हैं तो बच्चों को लगता है कि मैं ये शायद ऐसा हूँ कि मेरी जरूरत ही नहीं है किसी को।
0: बिल्कुल, और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जगह बदलने से शायद उसमें चेंजेस आ जाएं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता।
1: बिल्कुल ऐसा नहीं है, उस बच्चे को सामान्य बच्चे की तरह ट्रीट करने की जरूरत है, प्यार से बात करने की जरूरत है
0: जी।
1: अगर जरूरत पड़ती है, आपको लगता है कि आपका बच्चा किसी मानसिक रोग का शिकार हो रहा है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रह रहा है, उसकी आदतें चेंज हो रही हैं, तो उसको क्यों ना किसी मनोचिकित्सक से बात की जाए, हो सकता है वो अपनी बात आपसे ना रखे, उससे अपनी बात बता सके और इस तरह की जो स्ट्रेस लेवल है उसका वो कम हो सके
0: जी,
1: और अपराध की ओर बढ़ते हुए उसके कदम वहीं पे रुक जाए।
0: बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। पर अक्सर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हम उसे मनोचिकित्सक के पास लेके जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि इनका बच्चा पागल हो गया है।
1: ऐसा बिल्कुल नहीं है, मनोचिकित्सक की ज़रूरत तो सबको
0: सभी को होती है, बिल्कुल
1: हमें भी पड़ जाती है। और जब हमें लगता है कि स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो गया है, उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम खुद भी मनोचिकित्सक से मिल लेते हैं
0: जी। तो ये मतलब एक छोटा सा ट्रीटमेंट है, अगर उस ट्रीटमेंट से बच्चे की जिंदगी बच जाती है तो उसमें बुराई तो कोई नहीं है।
1: रुचिका, आपको एक और बात बताऊं, मैं मनोचिकित्सक के लिए जरूरी नहीं है कि हमें दूर जाना है। अक्सर लोग मजाक में बातें कर जाते हैं, पागल हो गया, इसको अमृतसर ले जाओ या वहां ले जाओ, वहां जाने की जरूरत नहीं है। मनोचिकित्सक भी सामान्य चिकित्सक की तरह होता है और ये हमारे जोनल हॉस्पिटल में भी हैं और टांडा मेडिकल कॉलेज में भी उपलब्ध रहते हैं
0: जी।
1: अगर किसी के बच्चे को ज़रूरत है, उनको लगता है कि बच्चे को मिलना चाहिए डॉक्टर से, तो वो मिल सकते हैं। और मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे की करियर काउंसलिंग के लिए भी मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि वो बीमार है, बच्चे की जो पहचान उसके भीतर जो कैलिवर है उसको हम नहीं पहचान पाते हैं, तो हम मनोचिकित्सक के माध्यम से उसकी उस प्रतिभा को जान सकते हैं। तो अपने बच्चे को अगर आपको लगता है तो हम उनसे मिल सकते हैं।
0: और खासकर ये जरूरत हमें तब पड़ती है, दोस्तों को ऐसा लगता है कि नहीं हमारे बच्चे को शायद कोई मतलब कि मेंटली डिस्टर्बेंस है, बट कहीं ना कहीं मतलब बात वही है, लैक ऑफ टाइमिंग है ना, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं और लैक ऑफ कम्युनिकेशन।
1: बिल्कुल, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है।
0: जब आप बात ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका बच्चा जो है क्या चाहता है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स, मैं एक केस शेयर करना चाहूंगी।
1: बिल्कुल,
0: एक जस्ट बात मतलब सेशन में बात हो रही थी तो मैंने पेरेंट्स से ये पूछा कि कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि आपके बच्चे की हॉबीज क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है। तो मुझे जवाब मतलब सुन के हैरानी भी हुई, पर पेरेंट्स का जवाब ये था कि हमने ये कभी नहीं पूछा।
1: बिल्कुल, और अक्सर आप पेरेंट्स को जब भी क्वेश्चन पूछते हो ना, आप काम करने के लिए किस लिए जाते हो, आप दोनों पति पत्नी कमा रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: क्यों कमा रहे हैं, तो उनका जवाब होता है बच्चों के लिए। लेकिन जिन बच्चों के लिए हम कमा के ला रहे हैं, उनके साथ दो पल हम बैठ के बात नहीं कर पाएंगे तो हमारी ये सारी कमाई धरी की धरी रह जाएगी और बच्चे का भविष्य जो है उसको हम सवार नहीं पाएंगे। हालांकि हम कमाते अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए हैं, लेकिन अगर हम चंद मिनट अपने बच्चों के साथ बैठ के उनकी समस्याएं नहीं सुनेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, तो पता नहीं ये छोटा सा जो समय हमने अपने बच्चों को नहीं दिया है, ये इसका भुगतान हमें कहाँ करना पड़े। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी कि जब भी समय मिले अपने बच्चों के साथ ज़रूर बैठें। उनके पहले दोस्त आप ही हैं, उनको अपने दोस्तों से आधी अधूरी जानकारियां हासिल ना करने दें। कोशिश करें जो भी उनकी क्वेरीज हैं, जो भी जिज्ञासा है, उसको आप खुल के सुने और उनको खुल के उनकी समस्याओं का हल भी बताएं।
0: जी बिल्कुल, और जब पेरेंट्स, जब बच्चे हाथ से निकल चुके होते हैं ना, या तो बहुत ही आगे जा चुके होते हैं गलत आदतों की तरफ, तब पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि कमी कहाँ रह गई, क्योंकि हमने तो प्रॉपर इनको पैसे जो हैं, जब भी इनको ज़रूरत पड़ी है इनको पैसे भी दिए हैं, जो इनको ज़रूरत की चीज़ें हैं हमने वो सब भी दी हैं, तो फिर आखिरकार कमी रही तो रही कहाँ। तो दोस्तों, कमी तो यही है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन।
1: बिल्कुल,
0: जो कि आपने समय नहीं दिया बच्चों को और ना आपने खुलकर बच्चों से बात की, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि आपके बच्चे चाहते क्या हैं, उनकी खुशी कहाँ पे है। तो वो पैसे से खुशी जो है दोस्तों कभी भी खरीदी नहीं जाती है, वो अपनेपन से उनको खुशी मिलेगी। और जब आप बात करोगे उनसे, उनको समय दोगे, तो वो आपसे हर बात शेयर करेंगे, हर बात जो है आपसे बताएंगे, चाहे फिर वो गलत रास्ते पे भी जा रहे होंगे तो घर पे वो बात जरूर करेंगे।
1: जब फ्रेंडली माहौल घर में मिलेगा तो बच्चा अपने मन की बातें अपने माता पिता से जरूर शेयर करेगा।
0: बिल्कुल, पर वहाँ पर आपको नॉन जजमेंटल होना पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अगर आप बच्चे को बीच में टोकोगे और उसे जज करना शुरू कर दोगे तो बच्चा आपसे कुछ भी शेयर नहीं करेगा।
1: बिल्कुल, बच्चे वैसे भी ना कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जिस और ढालेंगे ढल जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और जब हम बच्चों को बात बात पे टोका टाकी करते हैं, उनको उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करने देते हैं, तो उनकी जो अवसाद है वो बढ़ता जाता है, वो माता पिता से दूर होते जाते हैं और अपने लिए कंपनी बाहर ढूंढना शुरू कर देते हैं
0: जी।
1: तो रुचिका समय भी हो रहा है एक और गीत सुनने का।
0: जी बिल्कुल, बहुत मन कर रहा है एक मीठा सा गीत सुनने का। तो आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं मिलकर इस प्यारे से गीत को। और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं इस समय मेरे हौसलों की उड़ान।

0: बहुत ही मीठा सा गीत सुनाया है रुचिका ने, और गीत के बाद बहुत ही फ्रेशनेस भी महसूस हो रही है, हमारे दोस्त भी खुश होंगे
1: जी।
0: तो रुचिका जी, समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को।
1: जी बिल्कुल, और दोस्तों एक बार फिर से बता देती हूँ कि आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं किशोर न्याय अधिनियम की। तो आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और बात करते हैं कि किशोर न्याय अधिनियम जो है, इसे इसकी जो पहुंच है लोगों तक किस तरह से रहती है और ये कैसे काम करता है, तो ये आप थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दोस्तों को बताइए।
0: बिल्कुल रुचिका जी, किशोर न्याय अधिनियम का जो मेन फोकस है
1: जी,
0: वो हर एक बच्चे तो को जस्टिस पहुंचाना, एक बच्चे को मेन स्ट्रीमिंग में लाना, बच्चे के बढ़ते हुए अपराधों को रोकना, और जो बच्चे जरूरतमंद हैं जैसे अपाहिज हैं
1: जी,
0: उपेक्षित बच्चे हैं जिनको माता पिता ने छोड़ दिया है, गुमशुदा बच्चे हैं, या फिर अनाथ बच्चे हैं, सेमी ऑर्फन बच्चे हैं, या फिर वो बच्चे जिनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, उन बच्चों के लिए काम कर रहा है। साथ ही साथ ये कंफ्लिक्ट विद लॉ बच्चों के साथ काम कर रहा है। तो जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं, भिखारी या अन्य, उन बच्चों के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का हर जिला में गठन किया गया है। इस कमेटी का काम है उन बच्चों की देखभाल से संबंधित जरूरी आदेश पारित करना, साथ ही साथ उन बच्चों के पुनर्वास के लिए जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो करना, साथ ही हर जिला में राज्य स्तर पर और हर जिले में जिला बाल संरक्षण इकाई का गठन किया गया है राज्य सरकार द्वारा। इस इकाई का काम है इन सभी बच्चों तक पहुंच बना के रखना, हर एक बच्चे को सरकारी सुविधाएं जो मिल रही हैं उनको पहुंचाना। इस अधिनियम के तहत ये सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी बच्चा उपेक्षित ना रहे, कोई भी बच्चा अनदेखा ना रहे, जो भी बच्चा जरूरतमंद है उस तक सरकार की हर एक पॉलिसी पहुंचे, और जिला बाल संरक्षण कार्यालय के साथ साथ जिला बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड, ये तीनों समितियां और साथ ही साथ चाइल्ड हेल्पलाइन और बाकी के जितने भी कार्यालय हैं जो बच्चों से संबंधित काम करते हैं, इसमें शिक्षा विभाग को जोड़ा गया है, स्वास्थ्य विभाग को जोड़ा गया है, साथ ही साथ AHTU है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, ये सभी यूनिट जो हैं वो मिलके काम कर रहे हैं बच्चों के संरक्षण के लिए, उनकी देखभाल के लिए और उनके समुचित विकास के लिए। मानो कोई बच्चा गुम हो जाता है कहीं पे, तो उस बच्चे की रिपोर्टिंग जो है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में पुलिस जो है वो उस बच्चे को लेके आती है। कोई भी बच्चा कहीं मिलता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी देखती है कि अगर उस बच्चे का कोई अता पता नहीं है, कोई भी उसके पेरेंट्स क्या पता नहीं चल रहा है, कोई रिलेटिव नहीं मिल रहा है, कोई बच्चा गलती से अपने परिवार से बिछड़ के यहाँ आ गया है, तो ऐसे में उस बच्चे का पुनर्वास देखा जाता है सबसे पहले तो, कि उस बच्चे को रखा कहाँ जाएगा। ऐसे में इन बच्चों के लिए हर एक जिला में चाइल्ड केयर यूनिट बने हैं, जहाँ पे ऐसे बच्चे जो विस्थापित हैं, घरों से भागे हुए बच्चे भी हैं, उनको रखा जाता है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिली को ढूंढने के प्रयास किए जाते हैं। ऑर्फन बच्चों को भी CCIs में रखा जाता है। सरकार उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके कपड़ा जो भी है, उनका हर एक चीज़ का ध्यान रखती है। इन बच्चों को स्पेशल स्कॉलरशिप मिल रहे हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, और जो ऑर्फन बच्चे हैं जिनका कोई भी इस दुनिया में नहीं है, उनका पुनर्वास हो सके। जो गुमशुदा बच्चे हैं उनकी फैमिली को ढूंढा जाता है, उनके परिवार से मिलाया जाता है, और कई बार पॉक्सो विक्टिम्स भी हैं। कई बार ऐसे होता है रुचिका जी, हमने पहले भी बात की थी कि हम पीड़ित को ही हम अपराधी मान लेते हैं, उसी के साथ हम दुर्व्यवहार करते हैं
1: जी।
0: तो यौन अपराधों से पीड़ित अगर कोई बच्ची है, उसको पेरेंट्स या फैमिली अपने साथ नहीं रखना चाहती है, तो ऐसी बच्चियों का पुनर्वास भी किया जाता है, उनको CCI में रखा जाता है जब तक कि वो 18 साल की नहीं हो जाती। वैसे भी किशोर न्याय अधिनियम के तहत 18 साल तक के बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाती है, और इसके साथ साथ किशोर जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इन बच्चों का समय समय पर फॉलोअप भी करती है कि उनको जो सुविधा मिली है वो सही मिल रही है कि नहीं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में 5 सदस्य होते हैं, एक चेयरपर्सन और 4 सोशल वर्कर हैं, जिन्होंने बच्चों के साथ किसी भी फील्ड में काम किया हो, चाहे एजुकेशन के डिपार्टमेंट में किया हो या किसी अन्य NGO के साथ जुड़े हों, या कोई भी उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता है इसमें, इसमें दो महिला रहती हैं चेयरपर्सन के साथ, दो महिलाएं और दो पुरुष होते हैं जो मिलके काम करते हैं। इनकी कोई छुट्टी नहीं होती है
1: जी।
0: मतलब ये जो संस्था है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है ये 24/7 काम करती है। छुट्टियां जैसे इनका रोटेशन वाइज इनकी ड्यूटीज़ होती हैं, तो रोटेशन चार्ज जो है वो हर एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो सभी विभागों को भेज देती है, पुलिस को, एजुकेशन डिपार्टमेंट या जहाँ भी वो ज़रूरत है उनकी
1: जी।
0: वो सभी को भेजा जाता है। इसका पर्पज़ ये होता है कि अगर कोई बच्चा रेस्क्यू किया जाता है कहीं से भी, चाहे वो नशे वाला हो कोई भी हो
1: जी।
0: उसका पुनर्वास हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि पुलिस बच्चे को थाने में तो नहीं ले जा सकता, ना ही उसको जेल में रखा जा सकता है। तो ऐसे में रोटेशन चार्ज जो है वहाँ भेज दिया जाता है हर विभाग में, और जब भी उस बच्चे को कहीं भेजना होता है, कहीं रखना होता है, उसके संदर्भ में कोई भी ऑर्डर पुलिस को चाहिए होता है, तो वो उस संबंधित जो मेंबर है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का उसके पास उस बच्चे को भेज दिया जाता है। चाहे वो रात के 12 बजे बच्चे को रेस्क्यू किया है, चाहे 1 बजे किया है या दिन में किया है। और अगर उस दिन जैसे मानो छुट्टी है, कोई त्यौहार है, फेस्टिवल है, संडे की छुट्टी है
1: जी।
0: तो ऐसे में वो उस मेंबर के घर पे भी उस बच्चे को पेश करके उसके संदर्भ में ऑर्डर पास करवाया जा सकता है। इसी तरह स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है, जब भी किसी बच्चे के अगेंस्ट कोई अपराध दर्ज होता है, कहीं भी कोई रिपोर्टिंग आती है कि कोई बच्चा पकड़ा गया है, तो ऐसे में स्पेशल जुवेनाइल यूनिट उस बच्चे के रेस्क्यू के लिए या उस बच्चे के संदर्भ में जो भी कार्रवाई करनी होती है उसके लिए जाता है। तो ऐसे में इस संदर्भ में रुचिका जी, ये मैंने पहले ही कहा कि किशोर न्याय अधिनियम जो है ये अपने आप में बहुत ही व्यापक कानून है जिसके बारे में सिर्फ एक घंटे में चर्चा
1: समय में
0: नहीं
1: हम
0: है।
1: दोस्तों के साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं ना।
0: बिल्कुल, एक घंटे में इस सारी बात को हम अपने दोस्तों तक नहीं रख सकते हैं
1: जी।
0: तो मुझे लगता है कि समय का अभाव भी है।
1: बिल्कुल,
0: और इसी के साथ अगर मैं कहूँ कि अगले एपिसोड में हम चाइल्ड स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के बारे में चर्चा करें
1: जी।
0: और साथ ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में चर्चा करें, तो हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं कि इस एक्ट के तहत बच्चों को हम किस तरह से उनकी जरूरतों को देखते हुए उनके साथ जस्टिस कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जल्दी जल्दी में हम सारा कवर करें और आपको कुछ समझ में ही ना आए।
0: बिल्कुल,
1: तो इसलिए हम धीरे धीरे आपके अकॉर्डिंग जो है प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो चाहे फिर उसके लिए हमें 2 या 3 प्रोग्राम भी बनाने पड़ेंगे तो
0: मुझे
1: हम बनाएंगे।
0: लगता है कि बहुत बड़ा विषय है जिसको एक एपिसोड में हम पूरा नहीं कर सकते हैं
1: जी,
0: और इसके लिए हम अगली बार फिर से इसी विषय के साथ अपने दोस्तों से रूबरू होंगे
1: जी। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं बच्चे जो हैं आने वाला कल है, यानी कि हमारे देश का भविष्य है, कल का भविष्य है, तो उनके लिए हम इतने इग्नोर तो हम नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों का भविष्य बहुत ही ज़रूरी है, उसे संवारना, उसे सिक्योर करना। पर ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हमने ये जानकारी दी है तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही अपने लिए आवाज़ उठाएं इस जानकारी को जानकर। अगर आप भी अपने आसपास ऐसा कोई अन्याय होते हुए देख रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो जो भी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जो भी सुविधाएं जो हैं बच्चों के लिए बनाई गई हैं, तो आप उन बच्चों को उनसे रूबरू करवाइए और उन बच्चों की मदद कीजिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें और अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकें।
0: बिल्कुल,
1: तो मुझे लगता है कि आज हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंचाई है, और आप सभी इस जानकारी को ज़रूर अपने आगे बढ़ाएंगे, अपनों के लिए जो कि ज़रूरतमंद है उन्हें बताएंगे। तो अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। तो दोस्तों आप सभी का अगर कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल हो, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो और आप हमारे साथ जुड़कर उस सवाल के जवाब चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं और हम किसी कार्यक्रम में उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। पर सवाल आप सभी को करने होंगे, तो उसके लिए हमारा नंबर लिख लीजिए।
0: बिल्कुल दोस्तों, और हमारा नंबर है 9418431223। आप इस कार्यक्रम के संबंध में या आज जो हमने मुद्दा आपके सामने रखा है, जो भी जानकारी आपके साथ साझा की है, इसके संदर्भ में आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो आप बेझिझक हमसे पूछिए। आप हमें फोन कीजिए, मैसेज कीजिए या फिर व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। हमारा नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 9418431223। इसी विषय के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और अपनी बातें साझा कीजिए हमारे साथ।
1: जी दोस्तों, अब दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचि का और रूमा गुलेरिया जी को। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ इसी विषय के साथ अगले हफ्ते। तब तक आप सभी इसी तरह से इंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की। Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak

0: कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। श्री मोदी ने कहा कि हुर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान में सभी प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है। मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे हुर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉक्टर जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के गया पहुंच गए हैं। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक मजबूत व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वियतनाम के राष्ट्रपति आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति तो लाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। शाम को राष्ट्रपति तो लाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज IIT मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल PhD थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
2: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 480 अंक गिरकर 76,790 पर, जबकि निफ्टी 145 अंक लुढ़ककर 23,974 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान, तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, CUET और NDA के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा वगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117019701817091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।
1: अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कष्ट जानलेवा है, तंबाकू आज ही छोड़ें।
2: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं, ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान।
3: सुनो,
4: क्या है
3: ये सूट? कैसा है
4: ये तो बहुत अच्छा है।
3: अच्छा है
4: हाँ?
3: लेकिन ये 20,000 रुपए का है।
4: बस 20,000 का? आपको पता है आजकल इतने हैवी सूट तो 30,000 से कम में नहीं आते, ये तो आपको बड़े सही रेट पे मिल रहे।
3: अच्छा ले लो फिर।
4: हाँ हाँ ले लो ले लो।
3: चलो तुम कहती हो तो ले लेता हूँ। वैसे भी इस राखी पे मैंने दीदी को कुछ भी नहीं दिया।

नमस्ते दोस्तों, 91.2 MHz रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समा हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो 91.2 MHz ते पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो। तो मैं हां तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। तो मेरे नाल तुसी सुन रहे हो ये प्रोग्राम। तो आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोते हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहनी सोहनी पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो कुंजन धर्मशाला तो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदां ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम एंजॉय करदे रहो पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला तो सारे श्रोते एंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल रहे खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हैं तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

0: यह रेडियो कुंजन धर्मशाला 91.2 MHz इस वक्त तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। ते आओ हुण सुनदे आं प्रोग्राम दा होर पंजाबी गीत।
1: Never miss an update, subscribe now and press the bell icon.

श्रोताओ, रेडियो गुंजन धर्मशाला है ते तुसी 91.2 MHz ते बने होए हो। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। उम्मीद है पंजाबी गीतां दे इस प्रोग्राम च तुसी काफी इंजॉय कर रहे हो। तां हुण पेश कर रहे हां प्रोग्राम दा आखरी पंजाबी गीत।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 CCTV, AC नॉन AC अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, JEE, CUET और NDA के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कष्ट जानलेवा है, तंबाकू आज ही छोड़ें।
2: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, मिलाते नहीं, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं, ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान।
3: सुनो,
4: क्या है
3: ये सूट कैसा है?
4: ये तो बहुत अच्छा है।
3: अच्छा है?
4: हाँ।
3: लेकिन ये 20,000 रुपए का है। ले लो फिर।
4: हाँ, ले लो।
3: चलो तुम कहती हो तो ले लेता हूँ। वैसे भी इस राखी पे मैंने दीदी को कुछ भी नहीं दिया।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होई हो कार्यक्रम लेके माटी दी महक तां श्रोताओं कर देने कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीते कने तो तुहां सारे इन्ने बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज अपने बंदी।

सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला तने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे न माटी दी महक आशो तो वर्दे न कार्यक्रम चल गए तने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला थे ना रेडियो गुंजन धर्मशाला थे कने तो हाँ सारे ट्यून किते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है माटी दी महक श्रोताओं सुन दे एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 MHz पर। तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने। तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक। तो श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि कन्ने ता श्रोताओं बढ़ देन कार्यक्रम च अग्गे कन्ने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

तोहां सारें दा रेडियो गुंजन धर्मशाला तेने तोहां सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक आशो तो वर्दे न कार्यक्रम चगे तेने सुन देन एक और प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला से कने तुहां सारिया ट्यून किते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चलिया है माटी दी महक। श्रोताओं सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैंने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी भी महक। तो श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

तुहां सारें दा रेडियो गुंजन धर्मशाला तने तुहां सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक आशो तो बढ़ते न कार्यक्रम चगे तने सुन देन एक और प्यारा दिया गीत।

92.2 MHz पर ए तोहां सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक। कहां श्रोताओं अज कने कार्यक्रम च बस इतना ही। तो तोहां सारे ने बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख करना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान, तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।
1: अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कष्ट जानलेवा है, तंबाकू आज ही छोड़ें।
2: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं, ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान।
3: सुनो,
4: क्या है
3: ये सूट? कैसा है
4: ये तो बहुत अच्छा है।
3: अच्छा है
4: हाँ,
3: लेकिन ये 20,000 रुपए का है।
4: बस 20,000 का? आपको पता है आजकल इतने हैवी सूट तो 30,000 से कम में नहीं आते, ये तो आपको बड़े सही रेट पे मिल गए।
3: अच्छा ले लो फिर।
4: हाँ हाँ ले लो ले लो।
3: चलो तुम कहती हो तो ले लेता हूँ। वैसे भी इस राखी पे मैंने दीदी को कुछ भी नहीं दिया।

सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूं कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
2: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
2: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

संत रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कम्फर्ट, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 CCTV, AC नॉन AC अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब PG, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, JEE, CUET और NDA के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा वगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कष्ट जानलेवा है, तंबाकू आज ही छोड़ें।
2: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं, ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान।
3: सुनो,
4: क्या है
3: ये सूट? कैसा है
4: ये तो बहुत अच्छा है।
3: अच्छा है
4: हाँ,
3: लेकिन ये 20,000 रुपए का है।
4: बस 20,000 का? आपको पता है आजकल इतने हैवी सूट तो 30,000 से कम में नहीं आते, ये तो आपको बड़े सही रेट पे मिल रहे।
3: अच्छा ले लो फिर।
4: हाँ, ले लो ले लो।
3: चलो तुम कहती हो तो ले लेता हूँ। वैसे भी इस राखी पे मैंने दीदी को कुछ भी नहीं दिया।

नमस्कार श्रोतों, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा हूँ सचिन कपूर हाजिर बुझेगा तुम ते सभी रे रेडियो सेट में ता कदे इन चुनाव रीति आ रही तुंदी उम्मीद हा होप्स हो कि सब अपने अपने स्तर पर के ऐसा चुनाव री तैयारी करू कर दे हिन। BJP पार्टी अपनी तरफ था, कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ था, आज़ाद जो उम्मीदवार हिन जो प्रत्याशी खड़ू रहने सो अपनी तरफ था क्या सब तैयारी के रहे सो जोरों शोरों सो के घरू कर दे हिन और भूना भी चुन दी हिन है ना। लेकिन जनता जनार्दन जनार्दन वो हमेशा बलदा कि जो फैसला जनता लेंदे है सो बड़ा सही निर्णय लेंदे बड़ा सही फैसला किया सो बंदा हा। तो श्रोतों कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा बिल्कुल लाइव चलनी हिन 5 बजे तक, तो इस कार्यक्रम में जुड़ी सकते हैं, अपना पसंदीदा गीत होनी सकते हैं और दसी सकते हैं। अगर तू है इच्छुक हिन तो इंदा चुनाव संवाद कार्यक्रम किया सो चलना हा श्रोतों, जति अंदर है 17 वार्ड इवन की बाकी जितनी भी पंचायत हैं इंदी धर्मशाला री यारी सभी वे जो भी प्रतिनिधि हिन तैयार है कि ना सो इंटरव्यू करना चले न वे। और तो अगर इच्छुक इन और तुसू लगता कि तुंदे वार्ड थो जो भी प्रत्याशी खड़ रहे हैं जो भी कैंडिडेट खड़ रहे हैं उम्मीदवार खड़ रहे हैं तो जो लगता कि ये उम्मीदवार कि आ सो जितना चिंद या इस उम्मीदवार रहा कि आ सो इंटरव्यू भूना चिंदा जो कि तो है हुना चाहते हैं अपने वीडियो सेट में, तो तू है सो इस नंबर मंच कॉल करी करी या फिर इस नंबर मंच की आ सो तू है तेरा फोटो तेरा ना और तेरा व्हाट्सएप नंबर किया सो कर सकते हैं। नंबर है दिन दे 708-8-8-709 पर नंबर आक मौके फिरे 708-8-8-709 पर तो है सब श्रोता गया सो ज़रूर कॉल कर ही सकते हैं हम जो इस कार्यक्रम मंच भी और तो है व्हाट्सएप वे जरिए गया सो दस ही सकते हैं कि तुंदी चुना तुंदी पंचायत में गया सो कौन बंदा तो सो लगता कि बड़ा टैलेंटेड हा कौन बंदा जो बड़ा बलने वाला होनहार हा और एक्टिव हा जो तुसो लगता हा। तो ये सो कार्यक्रम में सभी पहले तो तू पता है धर्मशाला रा मौसम की सो बयान कर दे हिन। इस समय 19 डिग्री सेल्सियस तापमान है सो और ना मेरी गल करूँ तो 53% की सो नमी है 53 हिंदी अंदर बनते और 53 हिंदी अपनी गद्दी भाषा अंदर की सो बनते हैं। तो ये सब श्रोता होगी जुड़ने वास्ते नंबर है तो वो भी जरूर साझा करें 708-8-8-709 पर तो है जुड़े भी सकते हैं श्रोताओं। तो चलिए क्या लगता है श्रोताओं तुसो की तुंदे इलाके थों कौन बुना चिंदा उम्मीदवार प्रतिनिधि होप्सो सभी होगी सो ये लगता बुना अपने अपने बंदे सब भी लगते ना। लेकिन जो कैपेबल पर्सन हा शो तो जो तुसो लगता कि तुंदी सहायता करी सकदा तुसो अगे तुंदा सुख दुख में साथ दे सकदा मिलन अनुसार हा और मिलदा जुलदा रहिंदा तुसो अगे शिक्षा बुझगी पानी भी समस्या बुझगी स्वास्थ्य समस्याएं बुझगी ग्रामीण स्तर पर भी बहुत सारी चीज़ें बुंदी जिन्हें पर है विचार किया सो कर सकते हैं है ना। तो ज़रूर तो सब श्रोता हसोगे जुड़ी सकते हैं। फिलहाल सवाल तुंदे बुने हैं और बिल्कुल आसूता जो तुसु शख्स दस ना सो शख्स हसु अपने कार्यक्रम में किया सो हद ही लेना है कार्यक्रम रहना मौके फिर ये दसना चाहता तू सब भी हो चर्चा माफ करा चुनाव संवाद कार्यक्रम रहना आशो तो ताइया और भी बहुत सारी ताज़ा जानकारी हैं जो तू सोगू शेयर करनी ने साझा करनी ने। लेकिन तत्तों पहले गीत आगाज कर लें इंतज़ार है बहुत सारे श्रोता जो इंतज़ार हमेशा तो बंदा आगाज रखी अब बड़ी इन्हें गीत किया सो जरूर बुझेगा आगाज के कार्यक्रम रहा हिंदी अपनी गप्पा आगाज कर सो बुझेगा और फिर तत्वों बाद है मतलब जानकारी भी होन और श्रोतागण जो भी होन है ना। तो चलिए जी आगाज कर लेंदेन कार्यक्रम रहा और फिर तत्वों बाद
तुम तो सभी रे फरमाइशा भी हूं ले, तुम तो सभी री है फरमाइशा बिल्कुल पूरी कर ले शो। तो आइए होने दें तू सभी हो प्यारे दिया गीत तुम दे रेडियो सेट पा वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच गूंज अपने बन रहे।

0: শ্রোতা এফএম ব্যান্ড 91.3 দুই মেগাহার্টজ পর ভিডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো এসব ভিডিও গুরু অর্ডার কার্যক্রম সচিন কাপুর সোগে হুন কর দেন ইন্দি আপনি কে পাইয়ে শ্রোতং কার্যক্রম মাইন্দ শ্রোতা কর না সুগে কানেক্ট পুছ গে পুছ দেন কোন পল্লু কর দেন হর কারি তো নমস্তে জি। হ্যালো,
1: हेलो। हाँ जी
0: हाँ जी नमस्कार जी
1: नमस्कार जी
0: जी कौन बोल रहे हैं और कड़ी थे बोल रहे ना
1: है नाना बोल कर देते हैं ना।
0: अच्छा डाटा हूँ बोल रहे हैं और ना के दस तो है अपना।
1: इनके ना
0: अच्छा ठीक ठाक ने तो है
1: हाँ जी हाँ जी खड़े बढ़िया
0: राजी बाजी करे लगुरन अच्छा रेडियो मुख रेडियो हुनो कर दे मिलो अपना कदे लगता अपना गादा कार्यक्रम रेडियो मन जिंदा जी कर लगता कि गादा कार्यक्रम इंदा रेडियो मन जे अच्छा चलिए ठीक है जी तुम अपना कार्यक्रम और इस यूं ही होते रहना तुसु। अच्छा कुंडी ने गीत सुनना पसंद कर ले जी।
1: गीत तो माता रा तो खड़ा वो आने दरबार को
0: तुमने ना आवाज पतना को कटी कटी करी सुन दे मंजो ले सिग्नल रे दिक्कत है मा तेरा भजन हुनना है तो मंजो हुने को पर कुंडे ना हुनना जी ना जी तुम्हारी आवाज आवाज बड़ी कटी कर दिया माता रे भजन कोई भी सुना नहीं रही तुसु कोशिश करनो है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ कोई भगवान
0: ठीक है जी धन्यवाद। श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला और आऊँ सचिन कपूर हाँ इंदा अगले श्रोता सोगे कनेक्टेड हैं पुछ देन कौन बोलूँ देन और कड़ी थो बोलू कर देन नमस्ते जी नमस्कार जी नमस्कार
2: क्या चाल है ना।
0: हाँ जी बढ़िया जी तो है बल्ले तुम दे क्या हाल चाल ना।
2: बस बढ़िया जी बढ़िया।
0: अच्छा जी कौन बल्लू दे और कड़ी थो बल्लू दे जनाब।
2: ए तपोवन थे सफेदो राम।
0: तपोवन ता सफेदो राम जी बड़ा बुरा हाल करो तुम दा तपोवन रा मनु है।
2: हाँ जी हाँ जी
0: है ना।
2: हाँ जी
0: हाल बुरा की बुआ की कूड़ा कचरा के सो फेंके के छुंदे बना अंदर
2: बना तो पूरा भरी तेरे ना
0: पूरा भरी तो है ना। और ये कोई ज्यादा ज्यादा दूर रे मन उने ने इन द एरिया रे लोकल ले ने धर्मशाला रे इन मन उने।
2: हां जी क्योंकि जेड़ा धर्मशाला तो पूरा कमर सिटी है गांदे ना राती चपी लेओ दे।
0: अच्छा
2: कने ए बैठे लोई दे दे परले बराए पैसे।
0: ओ हो हो
2: ए ती थल्ले ने जंगला दे बीच दे कोई होंदा नहीं ना उस बल्ले राती।
0: हां जी हां जी
2: कने बस जीप लानी थी ना कने थल के बस सट्टी जाना।
0: ओहो
2: ये तो पीछे से बरदान नहीं दस से आता हूँ बरदान कुछ कर दे नहीं तो एक्शन नहीं कर दे था।
0: बड़ा सिस्टम खराब है नहीं जी।
2: हाँ जी ये कि माल बच्चू खाई लिया था फिर ये जैसी ऐसी चीजें हैं ना
0: बीमार हो। अच्छा तब प्रधान ने क्या बोलू जी तुसु।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड

दोस्त शशि के साथ। दीप सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओं, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यारी सी नमस्ते। जी हाँ श्रोता, पहुँच चुके हैं हम रेडियो गुंजन के स्टूडियो में लेकर ढेर सारी जानकारियाँ, और जानकारियों के साथ साथ एक और ख़ास चीज़ होती है, वो हर बार हम अपने साथ लेकर आते हैं। अरे श्रोता, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई, वो बात है, वो चीज़ है, प्यारे प्यारे गीत, चुनिंदा से गीत संगीत लेकर हम हाजिर हो जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारे गीत और कार्यक्रम हमारे श्रोताओं को पसंद आएगा। जी हाँ श्रोताओं, चलो आइए थोड़ी सी मेहनत करते हैं कार्यक्रम को और बढ़िया और खूबसूरत बनाने के लिए। तो सबसे पहले कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत के साथ, और आपको सुनवाते हैं लव स्टोरी फिल्म का ये प्यारा सा गीत। इस गीत को गाया है अमित कुमार और लता मंगेशकर ने। तो ये एंजॉय करते हैं कार्यक्रम के इस गीत को। तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

जी हाँ श्रोताओ, हम तो आ चुके हैं आपकी सेवा में लेकर ढेर सारी जानकारियाँ और प्यारे प्यारे गीत। गीत तो आपने सुन लिया, अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। श्रोताओ, कहते हैं फूलों की शुरुआत कली से होती है, जिंदगी की शुरुआत प्यार से होती है, और हाँ प्यार की शुरुआत अपनों से होती है, और अपनों की शुरुआत आपसे होती है। जी हाँ, आप हमारे बहुत ही अच्छे लिसनर हैं, बहुत ही अच्छे श्रोता हैं, और साथ ही साथ एक दोस्ती का रिश्ता हमारा आपके साथ जुड़ चुका है। और कहते हैं कि दोस्ती का रिश्ता जो है सब रिश्तों से अच्छा, मजबूत, प्यारा सा होता है। शर्त ये है कि दोस्त अच्छा होना चाहिए। और दोस्ती की बात चली है तो श्रोताओं, बहुत सारी बातें दोस्ती पे दिमाग में चलती है कि दोस्ती का रिश्ता ही किस तरह का रिश्ता होता है। जो बातें, जो सलाह हम अपने घर वालों से नहीं ले सकते हैं, वो बात हम अपनी दिल की अपने दोस्तों के संग कह डालते हैं। और दोस्तों को भी चाहिए कि अगर आपके साथ कोई अपने दिल की बात कहता है तो उसे सही राह दें, सही मार्गदर्शन करें, और साथ ही साथ उस बात को इधर उधर करने की बजाय अपने तक सीमित रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आजकल का समय ऐसा है कि बात को फैलते हुए टाइम नहीं लगता है। जहाँ तक हो सके अच्छे दोस्त बनाएं, दोस्तों की परख करना श्रोताओं सीखें। और ज़िंदगी में कहते हैं कि इंसान तो ऐसा होना चाहिए जिसके साथ हम अपने दिल की बात कर सकते हों। तो श्रोताओं, दोस्त अच्छा ढूंढिए और इसी दोस्ती को और मजबूत करते हैं, और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

जी हाँ, श्रोताओं धीरे धीरे बोलना चाहिए ताकि कोई हमारी बात को सुन ना ले। अगर हमें अपने दोस्तों तक भी वो बात पहुंचानी है तब भी हमें इधर उधर देख लेना चाहिए। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, और जब हम अपने दिल की बात कर रहे हों तो ज़रूर अपने इधर उधर देख लें कि कोई और तो नहीं सुन रहा है, क्योंकि हम दोस्तों के साथ वही बात ज़्यादातर कहते हैं जो किसी और से नहीं कहना चाहते हैं। तो थोड़ा सा अपनी इस बात का ध्यान रखें, और फिलहाल हमें तो आपका ध्यान रखना है। और चलते हैं थोड़ा सा स्थानीय जानकारियों की ओर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा के सचिव आर मयूल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि विशेष लोक अदालत का आयोजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय परिसर में 21, 22 और 23 अगस्त को होगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित तो मामले शामिल किए जाएंगे, जिसकी परिणति में विशेष लोक अदालत पूर्व सुलह बैठकों का आयोजन राज्य जिला तालुका उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण समिति स्थित मध्यस्थ केंद्र में किया जा रहा है। इस सुलह वार्ता के आयोजन के साथ राज्य तथा जिला स्तर का समाधान समारोह का आरंभ किया जाएगा। इस समाधान समारोह के आयोजन का लक्ष्य सर्वोच्च न्यायालय से लंबित उपयुक्त मामलों का सुलह तथा उसकी सहमति से निपटारा करना है। अधिवक्तागण बाद कारियों तथा अन्य सभी संबंधित पक्षों ने इस अभियान के सक्रिय रूप से भागीदारी के लिए आमंत्रित किया जाता है, ताकि समाधान समारोह में आपसी सहमति तथा वार्ता से समाधान तलाशने का प्रयास किया जा सके। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ।

तो इस प्यारे से गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और कुछ जानकारियां और हम आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें आपके साथ साझा करते हैं। श्रोताओ, आज है 6 मई और दिन है मंगलवार का, और मंगलवार के दिन भी बहुत सारी जानकारियां हमारे पास हैं। तो आज के दिन को हम मना रहे हैं विश्व अस्थमा दिवस के रूप में। हर साल मई के पहले मंगलवार को दुनिया भर में से मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है अस्थमा की बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, इसके निदान और उपचार के प्रति हम लोगों को शिक्षित करना है, ताकि हम भी जान सकें कि इसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, और किस तरह से इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। क्योंकि श्रोताओं, जिंदगी में आए हैं तो छोटे मोटे रोग तो चले ही रहते हैं। जब तक हमें इनकी पूरी जानकारी नहीं होगी, तब तक इनसे छुटकारा पाना भी मुश्किल हो जाता है। और जब हमें किसी चीज़ का पता होता है, जानकारी होती है, तो उस दुख से हम राहत भी पा लेते हैं।

राहत के साथ कार्यक्रम में थोड़ा सा सुकून चाह लेते हैं और सुकून मिलता है हमें गीत संगीत से। तो बिल्कुल देरी न करते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत। आप बने रहिए, जुड़े रहिए।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत है। और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त सुमन, लेकर हाजिर हुई हूं इस कार्यक्रम को। तो हम विश्व अस्थमा दिवस की बात कर रहे थे श्रोताओं। ये दिन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा आयोजित किया जाता है, और बढ़ते वायु प्रदूषण, वाहनों के धुएं और बदलते मौसम के कारण अस्थमा के रोगियों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। अस्थमा क्या है श्रोताओं, ये तो हम सभी जानते हैं, और फिर भी इसकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। अस्थमा फेफड़ों से जुड़ी एक लंबी अवधि की बीमारी है, जिसमें श्वसन मार्ग में सूजन आ जाती है और वे संकीर्ण हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में कठिनाई हो जाती है। तो श्रोता, ये हैं अस्थमा के जानकारी। जानकारी अभी और भी बहुत सारी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में थोड़ा सा रुकते हैं, लेते हैं एक अंतराल, और अंतराल के ठीक बाद हम आप तक पहुंचाएंगे कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो।

जी हाँ, श्रोता इसी गूंज के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और भाई, वादा आपसे किया है गाना सुनाने का, गीत सुनाने का, तो उस वादे को हम कैसे भूल सकते हैं? और वादा तो जल्दी से निभाते हैं, नहीं तो हमारे श्रोता हमसे नाराज़ भी हो सकते हैं। तो नाराज़ तो हमें श्रोताओं को बिल्कुल नहीं करना है। तो आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम।

जी हाँ श्रोताओ, हमने जो वादा किया था वो तो हमने निभा दिया है, और इसी वादे के साथ थोड़ा सा फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानकारियों की ओर रुख करते हैं, क्योंकि जानकारियाँ ढेर सारी आज हमारे पिटारे में हैं और उस पिटारे को हमें थोड़ा सा खाली भी तो करना है और आप तक पहुँचानी है ये जानकारियाँ। श्रोताओ, विद्युत उपमंडल नंबर 1 के सहायक अभियंता अभिषेक कटोच ने जानकारी दी है कि कालापुल सबस्टेशन पर 33/11 KV यार्ड और धर्मशाला शहर में इससे जुड़े 11 KV फीडर के सामान्य रख रखाव कार्य के लिए 6 मई को सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक, कार्य समाप्ति तक कोतवाली बाजार IPH कॉम्प्लेक्स, जमसी ऑफिस, यात्री निवास, जोनल अस्पताल, आयुर्वेदिक अस्पताल, न्यायिक परिसर, टेलीफोन एक्सचेंज, SP कार्यालय, DC कार्यालय, डिपो बाजार, सिविल लाइन, रामनगर लोअर DCB, महाजन क्लिनिक रामनगर, पुलिस लाइन, एक ज्योत कॉलोनी, चीलगाड़ी, हाउसिंग बोर्ड, शिक्षा बोर्ड, AIR सरकारी कॉलेज और BEd कॉलेज को चेलियाँ, HPCA स्टेडियम सरस्वती नगर, और इसके साथ साथ है सिविल लाइन, फॉरेंसिक लैब, माइक्रोवेव, टेलीफोन एक्सचेंज, नरगोटा टी एस्टेट, पेट्रोल पंप, गोरखा कॉलोनी, हाउसिंग कॉलोनी, सर्किट हाउस, ऑफिसर कॉलोनी, चीलगाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से बंद रहेगी। मौसम खराब होने पर अगले दिन शटडाउन किया जाएगा। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन। कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम श्रोताओं लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारी बात जो है अस्थमा बीमारी को लेकर हो रही थी। अस्थमा के सामान्य लक्षणों की बात करें श्रोताओं तो सांस फूलना या सांस लेने में परेशानी है, खांसी विशेषकर रात को यह सुबह ज़्यादा होती है। कहते हैं कोई भी दुख रात के समय ज़्यादा बढ़ जाता है और कई बार तो खांसी कंट्रोल नहीं होती है, बुरा हाल हो जाता है खांसी से और सीने में जकड़न रहती है। सांस लेते समय खरखराहट की आवाज़ भी आती है और इसके लक्षणों की बात करें कि इसके मुख्य कारण क्या है, किस वजह से होती है, तो ये प्रदूषण और धुएँ से होती है, धूल मिट्टी और पराग से होती है, पालतू जानवरों के बाल से होती है, तेज गंध या इत्र से होती है और ठंड के मौसम में ये समस्या श्रोताओं बढ़ जाती है। अगर बढ़ती है तो उसका बचाव तो श्रोताओं हमें ही करना पड़ेगा ना, तो आइए थोड़ी सी बात बचाव की भी कर लेते हैं। और फिक्र ना करें श्रोताओं, गीत भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन लेकिन जानकारियाँ बेहद ज़रूरी होती हैं। अगर हमें जानकारी होगी तभी तो हम बचाव कर सकते हैं ना। प्रदूषण और धुएं से हमें अपना बचाव करना है। मास्क का उपयोग हम कर सकते हैं, घर पर धूल और नमी को कम रखें। अगर धूल का काम कर रहे हैं तो मास्क लगा कर करें या दुपट्टे की सहायता से हम अपने मुंह को भी ढक सकते हैं, क्योंकि स्वच्छता बेहद ज़रूरी होती है, चाहे घर की हो चाहे घर के आसपास की हो। तो घर को साफ सुथरा रखने के लिए हमें थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखना है। अगर हम ही सही नहीं होंगे तो अपने घर की सफाई किस तरह से कर सकते हैं। तो श्रोताओं हम चाहते हैं हमारे श्रोता जो है तंदुरुस्त रहकर इस प्यारे से जीवन को एंजॉय करें। तो तंदुरुस्त तो तभी रहा जा सकता है जब हम थोड़ा सा अवेयर खुद के लिए हो जाएं, खुद के लिए थोड़ा सा जागरूक होना ज़रूरी है।

और हाँ, एक और बड़ी बात बचाव की है कि एलर्जी पैदा करने वाली चीज़ों से दूर रहें, नियमित रूप से डॉक्टर से परामर्श करें, और अगर डॉक्टर इनहेलर का उपयोग करना बताते हैं तो वो भी ज़रूर कहे। डॉक्टर के बताए बिना किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना भी सही नहीं रहता है। तो श्रोताओं, इन्हीं जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, या फिर अपने दोस्तों के साथ। रेडियो गुंजन वाले दोस्तों के साथ, किसी और दोस्त के साथ नहीं, क्योंकि तो रेडियो गुंजन वाले दोस्तों के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सुनने के मिलेंगे प्यारे प्यारे गीत।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद फिर से हम कार्यक्रम की ओर रुख करते हैं और हमारी बातचीत जो है अस्थमा के ऊपर हो रही थी। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास में 2030 एजेंडा और विश्व स्वास्थ्य संगठन के गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए वैश्विक कार्य योजना दोनों ही अस्थमा की प्राथमिकता देती हैं और अस्थमा के निदान, रोकथाम और उपचार के बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियां लागू करते हैं। भारत में अस्थमा से पीड़ित लोगों को दैनिक लक्षणों, जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभावों और स्कूल व नौकरी से अनुपस्थिति का असमान रूप से अधिक बोझ उठाना पड़ता है। इसके अलावा भारत, न्यूयॉर्क शहर, स्पेन, तुर्की और बहरीन के शोधकर्ताओं ने बच्चों में अस्थमा की देखभाल के बारे में समझ और व्यवहार की कमी देखी है। निष्कर्ष निकला है कि बच्चों की ज़रूरतों को समझना और छात्रों की स्कूल से अनुपस्थिति को कम करने के लिए निरीक्षण कार्यक्रम आवश्यक है। सांस के जरिए श्रोताओं ली जाने वाली चिकित्साओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना है। रोके जा सकने वाले रुग्णता और मृत्यु दर को कम करना है। इसके साथ साथ जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देना है। नीतिगत बदलाव जरूरी है और मरीजों और समुदाय को सशक्त बनाना है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी बहुत समय हमारे पास बाकी है, जानकारियां भी साझा करेंगे और गीत भी आपको सुनवाएंगे। तो श्रोताओं, फिर से हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप नहीं मिलते हैं तो हमें थोड़ी सी घबराहट होने लगती है और जल्दी से आप मिल जाएं तो एक खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो आइए जल्दी से सुनते हैं कार्यक्रम की।

तो इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला, और कार्यक्रम जो है आप सभी के रेडियो सेट पर चल रहा है वो है गुड इवनिंग धर्मशाला। और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सुमन, लेकर हाजिर हुई हूँ इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो श्रोताओ, कार्यक्रम में कुछ स्थानीय जानकारियाँ और आपके साथ साझा कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहाँ बताया है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखिंदर सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपनी नागरिक हितैषी वॉच एंड पेट्रोल पहल की शिमला के माल रोड से आगे बढ़ते हुए मनाली, सोलन तथा मैकलोडगंज सहित अन्य मुख्य पर्यटन स्थलों तक सफलतापूर्वक विस्तारित किया है। उन्होंने बताया है कि आरंभ में माल रोड पर पुलिस से विजिबिलिटी बढ़ाने, जन सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा पर्यटकों की सहायता के उद्देश्य से शुरू की गई ये पहल अब सेवा सुलभता और जन विश्वास पर आधारित आधुनिक पुलिस का एक प्रभावी मॉडल उभर कर सामने आई है। उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत औपचारिक वर्दी में पुलिस कर्मियों को प्रमुख स्थानीय सार्वजनिक स्थलों पर तैनात किया जाएगा, जो पर्यटकों की सहायता, मार्गदर्शन और वरिष्ठ नागरिकों की मदद तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेंगे। इस पुलिस कर्मियों की सहज उपस्थिति में पर्यटकों को स्थानीय निवासियों में सुरक्षा और विश्वास की भावना को काफ़ी मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस कर्मियों के अनुशासित, विनम्र और सहायता व्यवहार के लिए इस पहल को व्यापक सराहना मिली है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश पुलिस की एक जन केंद्रित तथा सकारात्मक छवि बनी है। तो श्रोता, अपनी जानकारियों को थोड़ा सा यहीं पर देते हैं विराम और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये गीत। तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन।

0: तो इसी गीत के साथ कार्यक्रम में समय हो गया है समाचारों का।
1: विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 1,52,00,000 रुपए के आवंटन के साथ 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। इसमें किसानों के लिए कई बड़े फैसले शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने कपास उत्पादकता मिशन कपास क्रांति को स्वीकृति दी है।
2: 5,659 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसके तीन कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना और तीसरा न्यू एज फाइबर्स के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना। कस्तूरी कॉटन, इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि गन्ना सीजन वर्ष 2026-27 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FPR को भी मंजूरी दी गई है। इससे करीब 32 लाख किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2 नई सेमीकंडक्टर इकाई को भी मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केरलम में कांग्रेस पार्टी में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। विधायक दल की आधिकारिक बैठक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पार्टी बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगी। पुदुचेरी में मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज पार्टी विधायकों की बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने कहा कि वोटों की हेराफेरी की गई है और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली हुई है। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि चाहे वो इस्तीफा दें या ना दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
3: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, NDA के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा में पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में 6ठे और दिल्ली 7वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, इसी गूंज के साथ कार्यक्रम में फिर से हमारी वापसी हो चुकी है और कुछ जानकारियां और आपके साथ साझा कर लेते हैं। मई माह के दौरान HPCA स्टेडियम में आयोजित होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के 3 महत्वपूर्ण मैचों के दृष्टिगत जिला प्रशासन कांगड़ा द्वारा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन तथा आपातकालीन प्रतिक्रियाओं से संबंधित सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस संबंध में ADM कांगड़ा शिल्पी वेंकटा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन द्वारा पूर्व निर्वाचित 4 मॉक ड्रिल्स सफलतापूर्वक संपन्न की कर ली गई हैं तथा सभी संबंधित विभाग किसी भी संभावित आपदा स्थिति से निपटने के लिए पूर्णतः तैयार है। उन्होंने बताया कि आयोजन की संवेदनशीलता तथा बड़ी संख्या से संभावित दर्शकों, खिलाड़ियों, VIP, BBIP, मीडिया प्रतिनिधियों तथा आयोजन कर्मियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संबाधित आपदाओं परिदृश्य तथा आधारित मॉक अभ्यास आयोजित किए गए हैं। इस अभ्यास के माध्यम से न केवल विभागों की प्रतिक्रिया क्षमता का प्रशिक्षण किया गया है, बल्कि संसाधनों की उपलब्धता, संचार प्रक्रिया, निकासी योजना, भीड़ यंत्र तथा अंतर विभागीय समन्वय का भी व्यापक मूल्यांकन किया गया है। तो श्रोताओ, अपनी जानकारियों को यहीं पर देते हैं विराम और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में हमने श्रोताओं अस्थमा की बात तो कर ली है, अब थोड़ा सा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चाइल्डहुड डिप्रेशन अवेयरनेस डे के बारे में। हर साल मई के पहले मंगलवार को इसे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों में होने वाले डिप्रेशन के कारण, लक्षण और उपचार के प्रति माता पिता तथा समाज को जागरूक करना है, ताकि समय रहते बच्चों को मानसिक सहायता दी जा सके। और इसके साथ साथ बच्चों में डिप्रेशन के बहुत सारे लक्षण देखे जाते हैं कि कोई पढ़ाई को लेकर परेशान है, तो कई बार किसी के साथ कोई ऐसी ट्रेजडी हो जाती है जिसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो लगातार उदासी और चिड़चिड़ापन, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आना या हमेशा रोते रहना, इन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए और ये फ़र्ज़ बनता है हम अभिभावकों का। तो जिन गतिविधियों में पहले मज़ा आता था बच्चों को, उनमें अब दिलचस्पी ना लेना ये भी कारण हो सकता है। व्यवहार में बदलाव हो सकता है, जैसे दोस्तों और परिवार से दूर रहना, अलग थलग रहना। शारीरिक बदलाव की बात करें श्रोताओं, तो नींद कम या ज़्यादा आना और भूख में अचानक बदलाव होना, आत्मविश्वास में कमी होना और खुद को बेकार या हीन समझना, तो श्रोताओं इन चीज़ों का हमें ही ध्यान रखना है, क्योंकि अभिभावक बच्चों की हर छोटी मोटी गतिविधियों का ध्यान रख सकते हैं। तो इन्हीं जानकारियों के साथ किशोर कुमार की आवाज़ों में आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम।

तो हर श्रोता आवाज़ के जरिए पहचान लेता है, लेकिन आए दिन हमारे साथ नए नए श्रोता जुड़ते रहते हैं और उनकी जानकारी के लिए श्रोताओं परिचय देना तो बनता है, क्योंकि नए दोस्त हमें मिले हैं तो उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि अरे हमारा आज कौन सा रेडियो दोस्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो श्रोता हमने तो बता दिया, खैर हमें पता है हमारे जो रेडियो के दोस्त हैं और जो हमारे श्रोता हैं उनकी दोस्ती बहुत गहरी है, तभी तो हम चले आते हैं हर दिन आपसे मिलने के लिए और ढेर सारी जानकारियाँ आपके साथ साझा करने। तो श्रोता मन तो नहीं करता है आपसे बिछड़ने का, मन करता है लगे रहे करते रहे बातें, लेकिन भाई थोड़ा सा घर परिवार की ओर ध्यान दे तो लगता है पीछे भी कोई बैठा है, उनका भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अभी थोड़ा समय बाकी है उनके पास जाने के लिए, अभी थोड़ा आपसे ही बता लेते हैं। तो श्रोताओ हमारी बातचीत डिप्रेशन के कारणों के बारे में हो रही थी, तो पारिवारिक समस्याओं की बात करें तो माता पिता के बीच अनबन या खराब पारिवारिक माहौल भी डिप्रेशन का कारण हो सकता है। आनुवांशिक यानी जेनेटिक परिवार में किसी को पहले डिप्रेशन या मानसिक बीमारी का इतिहास होना, इसके साथ साथ तनाव, स्कूल में पढ़ाई का दबाव, बुलिंग, धमकाने वाले या किसी प्रियजन को खोने का डर, ये भी जो है तनाव का कारण हो सकता है। बचपन में किसी बुरी घटना का सामना दिमाग में रह गया हो तो इससे भी जो डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन के श्रोताओं 36 कारण हैं, किसकी बात करें और किसकी छोड़े, आप भलीभांति इन कारणों को जानते हैं, लेकिन जो है कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनका हमारा ध्यान ही नहीं जिनकी ओर जाता है। हर किसी की अपनी अपनी समस्या है, हर किसी की अपने अपने टेंशन्स है, लेकिन बचाव और समाधान की बात करें तो बच्चों की बात सुने, उन्हें जज ना करें, उन्हें सुरक्षित महसूस कराएं, समय बिताएं उनके साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, उनकी भावनाओं को समझें, पेशेवर मदद ले। यदि बच्चों का उदास व्यवहार कई हफ्ते तक बना रहता है तो किसी बाल मनोवैज्ञानिक या डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें। श्रोताओं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति बच्चों को जागरूक करना और उन्हें सही समय पर थेरेपी इलाज दिलाना उनके उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो श्रोताओं इस समय आवश्यक है कार्यक्रम का आप तक गीत पहुंचाना, तो बिल्कुल देरी न करते हुए आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, और हम बात कर रहे थे आज बच्चों के बारे में कि ये जो है टेंशन, परेशानी या डिप्रेशन, ये केवल बड़ों को नहीं होता है, बच्चों में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। बच्चों का कभी कभार उदास होना, चिड़चिड़ा व्यवहार या ख़राब मूड का रहना सामान्य बात है, लेकिन जब उदासी या ख़राब मूड हफ्तों या इससे अधिक समय तक बना रहता है तो बच्चों के व्यवहार में अन्य बदलाव भी दिखाई देते हैं, वो अवसाद हो सकता है। इन बच्चों की मदद हम कर सकते हैं जो उदासी या अवसाद से गुजर रहे हैं। माता पिता भी उन्हें अपना उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, यानी भाई हमें, यानी अभिभावकों को तो बच्चों की ओर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। सही देखभाल मिलने से स्थिति बिगड़ने से बच सकते हैं, और बच्चों को बेहतर महसूस करवाने में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। अगर उदासी कई हफ्तों या अधिक समय तक रहे तो हमें डॉक्टर से भी मिलना चाहिए। तो फिलहाल हम तो अपने दोस्तों के साथ मिल ही रहे हैं, लेकिन मिलते मिलाते बीच में थोड़ा सा अंतराल ले लेते हैं, और फिर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत। आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

चलो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम वापिस आते हैं, क्योंकि अभी जानकारियाँ कुछ बाकी हैं। तो हम बच्चों में अवसाद की बात कर रहे थे, उदासी या खामोशी, मनोदशा। बच्चा उदास, अकेला, नाखुश, चिड़चिड़ा सा लगता है। ये कई हफ्तों और महीनों तक इस तरह से रहे तो हमें डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। या फिर कई बार बच्चे क्या होते हैं श्रोता, हमने देखा है अचानक से रोने लग जाते हैं, उन्हें पहले से ज़्यादा गुस्सा आता है। अवसाद से गुजर रहे बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं। वे आत्म अवलोचन वाली बातें कर सकते हैं, जैसे मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता, मेरे कई दोस्त नहीं हैं, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इस तरह की बातें बच्चों को करते आपने देखा होगा, ये सुना होगा। तो थोड़ा सा उन्हें हमें प्रोत्साहित करना है। अवसाद बच्चों की ऊर्जा को ख़त्म कर देता है। वे पहले की तुलना में स्कूल में कम मेहनत कर सकते हैं। छोटे छोटे काम भी उन्हें बहुत मुश्किल लगते हैं। बच्चे थके हुए लगते हैं, आसानी से हार मान देते हैं या कोशिश भी नहीं करते हैं। इसके साथ साथ श्रोताओ, बच्चे दोस्तों के साथ पहले जितना मज़ा नहीं करते हैं, पहले की तरह खेलना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें शायद उन चीज़ों को करने का मज़ा नहीं आता है जो पहले किया करते थे। अब नींद की बात करें तो बच्चे अच्छी तरह से सो नहीं पाते हैं, पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से थके थके से बुझे बुझे से लगते हैं। कुछ बच्चों को खाने की इच्छा नहीं होती है, वहीं कुछ बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। कुछ बच्चों को पेट दर्द या अन्य दर्द हो सकती हैं। कुछ बच्चे अस्वस्थ महसूस करने के कारण स्कूल नहीं जाते हैं, भले ही वह बीमार ना हो। कुछ छुट्टी करने का बहाना करते हैं, जैसे ही स्कूल जाने का टाइम हो जाए फटाफट से सो जाते हैं। किसी के पेट में दर्द हो रही है, किसी को नींद आ रही है, किसी को बुखार हो जाता है, इस तरह के बहाने बच्चों को लगाते हैं, आपने सुना होगा। तो श्रोताओ, हम अभिभावकों को इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और अपने बच्चों को सहारा बनना है। साथ ही साथ उन्हें जो है हर चीज़, जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो भी प्रोवाइड करवानी है। तो इस समय हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये गीत। आप बने रहिए।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला, और कार्यक्रम में हमारी बातचीत हो रही थी बच्चों के बारे में। अवसाद के कई कारण होते हैं श्रोताओं, इसका कोई एक कारण नहीं है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें अवसाद के प्रति अपनी संवेदनशीलता बनाते हैं, उनके परिवार के अन्य सदस्य भी अवसाद से पीड़ित हो जाते हैं। कुछ बच्चे तनावपूर्ण परिस्थिति से गुजरते हैं, कुछ हानि आघात कठिनाइयों का सामना करते हैं, कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हैं। इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। मुश्किल समय के दौर में उनके बाद अतिरिक्त सहायता मिलने से बच्चों को अवसाद से बचाया जा सकता है, उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। अच्छी सहायता मिलने के बावजूद कुछ बच्चे अवसाद ग्रस्त होते हैं। थेरेपी उन्हें ठीक होने, बेहतर महसूस कराने, जीवन का आनंद लेने में मदद करती है। तो श्रोताओं, फिर से कार्यक्रम में थोड़ा सा हम रुकते हैं और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: तो इसी गीत के साथ कार्यक्रम में समय हो गया 7:45। तो आइए आपको सुनवाते हैं समाचार।
1: शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी शिमला में एकीकृत मातृ व शिशु अस्पताल स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने के अधिकारियों को दिए निर्देश। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पीठासीन अधिकारियों की समिति के सदस्यों को नियमित प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अनुभवों के अध्ययन पर दिया बल। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने देहरादून मिलिट्री कॉलेज के कैडेट्स को हर क्षेत्र में चुनौतियों को विकास के तौर पर देखने की दी सलाह। राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने कन्या विद्यालय नादौन को बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विलय को तुरंत रद्द करने का सरकार से किया आग्रह। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में वर्षा से तापमान में गिरावट, 6 मई से मौसम में सुधार के आसार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में एकीकृत मातृ व शिशु अस्पताल स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। शिमला में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सचिव आशीष सिंघमार के नेतृत्व में एक समिति गठित करने के निर्देश दिए। ये समिति इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में इस इकाई की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करेगी ताकि इसका प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेडिकल कॉलेजों में नैदानिक सेवाओं के दृष्टिगत मरीजों के लिए प्रतीक्षा अवधि को शून्य करने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग को सुझाव देने को कहा। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के पीठासीन अधिकारियों की समिति की बैठक आज जयपुर में आयोजित की गई। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस बैठक में भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि समिति प्रणाली लोकतंत्र में मिनी सदन की भूमिका निभाती है, जहां विस्तृत विचार विमर्श और सूक्ष्म परीक्षण संभव होता है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये प्रणाली किसी भी लोकतांत्रिक विधायिका का अभिन्न अंग है और ये संसद और विधानमंडलों के कार्यों को अधिक प्रभावी व उत्तरदायी बनाती है। कुलदीप सिंह पठानिया ने इस दौरान कई सुझाव भी दिए और कहा कि समितियों की सिफारिशों को अधिक प्रभावी व बाध्यकारी स्वरूप दिया जाना चाहिए। उन्होंने समिति के सदस्यों को नियमित प्रशिक्षण कार्यशालाएं और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अनुभवों का अध्ययन करवाने पर बल दिया, जिससे समिति की कार्यक्षमता बढ़ेगी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से आज लोकभवन में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के कैडेट्स ने भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने सशस्त्र बलों के लिए युवाओं को तैयार करने में आरआईएमसी की उत्कृष्ट भूमिका की सराहना की। उन्होंने राष्ट्र के लिए अनुशासित, एकाग्र और देशभक्त अधिकारियों के निर्माण में संस्थान के योगदान की सराहना की। उन्होंने कैडेट्स को हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने और चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखने की प्रेरणा दी। राज्यपाल ने कैडेट्स को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल ने आधुनिक दुनिया की बदलती आवश्यकताओं का उल्लेख करते हुए कैडेट्स को जिज्ञासु, बौद्धिक रूप से सजग और निरंतर सीखते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने नारी शक्ति वंदन विधेयक को संसद की 543 सीटों के आधार पर लागू करने की केंद्र से मांग की है। आज शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए कांग्रेस प्रधानमंत्री को 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजेगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आज महिला कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान भी शुरू कर दिया है।
2: आरक्षण कानून पास है, लागू का दबाव है, लेकिन ये भाजपा सरकार को झुकाने के लिए हमें मालूम है इस आधी आबादी को सड़कों पर आकर चलो संसद के नारे के साथ हम जुलाई के मानसून सत्र में 10 लाख बहनों के बीच में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, पोस्ट कार्ड अभियान चला रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी के नाम उनके पते पर 10 लाख महिलाएं पोस्ट कार्ड जुलाई सत्र से पहले पहुंचाएंगी।
1: अलका लांबा ने कहा कि महिला कांग्रेस हिमाचल में 68 विधानसभा सीटों पर टैलेंट हंट कर महिलाओं को चुनाव के लिए तैयार करेगी। प्रदेश भाजपा सचिव वंदना योगी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण, परिसीमन और जनगणना जैसे गंभीर विषयों पर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संविधान संशोधन और परिसीमन के बाद दक्षिण भारत की राजनीतिक शक्ति कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। वंदना योगी ने कहा कि कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत और न ही ठोस मुद्दे हैं, इसलिए वो जनता को भ्रमित कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जो संगठनात्मक स्तर पर भी महिलाओं को 33% से अधिक भागीदारी देता है। जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर वंदना योगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट निर्णय लिया है कि आगामी जनगणना में जाति जनगणना भी शामिल होगी। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने नादौन के सरकारी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के साथ विलय करने के प्रदेश सरकार के निर्णय पर कड़ा विरोध जताया है। नादौन क्षेत्र के आम लोगों और अभिभावकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस विषय में आज डॉक्टर सिकंदर से भेंट कर इस फैसले पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। सिकंदर कुमार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस विलय को तुरंत रद्द करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस कन्या विद्यालय में लगभग 500 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और सरकार का ये कदम क्षेत्र की बेटियों की शिक्षा और उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने जनहित में इस निर्णय को वापस नहीं लिया तो भारतीय जनता पार्टी इसके विरुद्ध बड़ा आंदोलन करेगी। विश्व संवाद केंद्र द्वारा आज शिमला में देवर्षि नारद जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम विशेष तौर पर पत्रकारों के लिए आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पत्र सूचना कार्यालय शिमला के सहायक निदेशक संजीव शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष राजेश बंसल ने बताया कि कार्यक्रम में पत्रकारों के समक्ष आने वाली चुनौतियों और इसका समाधान पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान चर्चा में सामने आया कि कुछ फिल्मों में नारद जी की गलत छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की गई, जिसे आज बदलने की आवश्यकता है।
3: उद्देश्य हमारा यही है कि जो पत्रकारिता, जो संवाद नारद जी ने अपने समय में किया, आज के पत्रकार भी उसी लाइन पर चलें और सच्ची पत्रकारिता को जो है अपनाएं।
1: इस अवसर पर विभिन्न समाचार पत्रों के संपादक, संवाददाता, ब्यूरो प्रमुख व मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स मौजूद रहे। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज दोपहर बाद से वर्षा हुई। पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और मई महीने में भी लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार के मुताबिक आज कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि 6 मई से प्रदेश में मौसम साफ होने लगेगा।
4: 6 मई से लेकर 9 मई तक जो हमारे जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, यहाँ पे मौसम मुख्यतः साफ बना रहेगा। हालांकि जो हमारे मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें विशेषकर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, इसके जो आसपास क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में उसमें एक स्थानों में 6 मई से लेकर 9 मई तक हल्की बारिश हो सकती है। 7 मई से लेकर 9 मई तक प्रदेश में कोई अलर्ट नहीं।
1: भारतीय जनता पार्टी ने पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकाय चुनाव के तहत जिला परिषद चुनावों के लिए समर्थित उम्मीदवारों की विस्तृत व संयुक्त सूची जारी कर दी है। प्रदेश चुनाव संयोजक विपिन सिंह परमार ने मंडल, जिला व प्रदेश स्तर पर व्यापक विचार विमर्श और संगठनात्मक मंथन के बाद इस सूची को अंतिम रूप दिया है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए महिलाओं, युवाओं और अनुभवी कार्यकर्ताओं को उचित अवसर प्रदान किया गया है। प्रदेश पुलिस ने अपनी नागरिक हितैषी वॉच एंड पेट्रोल पहल को शिमला के मॉल रोड से आगे बढ़ाते हुए मनाली, सोलन और मैक्लोडगंज सहित अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों तक सफलतापूर्वक विस्तारित किया है। पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि आरंभ में मॉल रोड पर पुलिस विजिबिलिटी बढ़ाने, जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और पर्यटकों की सहायता के उद्देश्य से शुरू की गई ये पहल अब सेवा, सुलभता और जन विश्वास पर आधारित आधुनिक पुलिस का एक प्रभावी मॉडल बनकर उभरी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी शिमला में एकीकृत मातृ व शिशु अस्पताल स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने के अधिकारियों को दिए निर्देश। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पीठासीन अधिकारियों की समिति के सदस्यों को नियमित प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अनुभवों के अध्ययन पर दिया बल। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने देहरादून मिलिट्री कॉलेज के कैडेट्स को हर क्षेत्र में चुनौतियों को विकास के तौर पर देखने की दी सलाह। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कन्या विद्यालय नादौन को बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विलय को तुरंत रद्द करने का सरकार से किया आग्रह। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में वर्षा से तापमान में गिरावट, 6 मई से मौसम में सुधार के आसार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
0: समाचारों के साथ ही श्रोताओं, चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। इस समय हम श्रोताओं पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ अनुमति दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की। अगली बार नई बातों, नई जानकारियों के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।

0: सीधे पेरेंट्स तक साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 CCTV, AC नॉन AC अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है। सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान पर रुचिका, ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं 7831989044 पर।
0: होमली हब PG, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, JEE, CUET और NDA के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117019 1701. आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।
1: अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कष्ट जानलेवा है, तंबाकू आज ही छोड़ें।
2: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, मिलाते नहीं, छोड़ देते, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान।
3: सुनो,
4: क्या है
3: ये सूट कैसा है?
4: ये तो बहुत अच्छा है।
3: अच्छा है?
4: हाँ।
3: लेकिन ये 20,000 रुपए का है।
4: बस 20,000 का? आपको पता है आजकल इतने हैवी सूट तो 30,000 से कम में नहीं आते, ये तो आपको बड़े सही रेट पे मिल रहे हैं।
3: अच्छा, ले लो फिर।
4: हाँ हाँ, ले लो ले लो।
3: चलो तुम कहती हो तो ले लेता हूँ। वैसे भी इस राखी पे मैंने दीदी को कुछ भी नहीं दिया।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कम्फर्ट, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 CCTV, AC नॉन AC अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब PG, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, JEE, CUET और NDA के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117019. आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कष्ट जानलेवा है, तंबाकू आज ही छोड़ें।
2: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, मिलाते नहीं, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान।
3: सुनो,
4: क्या है
3: ये सूट? कैसे
4: ये तो बहुत अच्छा है।
3: अच्छा है?
4: हाँ।
3: लेकिन ये 20,000 रुपए का है।
4: बस 20,000 का? आपको पता है आजकल इतने हैवी सूट तो 30,000 से कम में नहीं आते, ये तो आपको बड़े सही रेट पे मिल रहे।
3: अच्छा, ले लो फिर।
4: हाँ हाँ, ले लो ले लो।
3: चलो तुम कहती हो तो ले लेता हूँ। वैसे भी इस राखी पे मैंने दीदी को कुछ भी नहीं दिया।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कम्फर्ट, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।
1: अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कष्ट जानलेवा है, तंबाकू आज ही छोड़ें।
2: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, मिलाते नहीं, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं, ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान।
3: सुनो,
4: क्या है
3: ये सूट? कैसा है
4: ये तो बहुत अच्छा है।
3: अच्छा है
4: हाँ?
3: लेकिन ये 20,000 रुपए का है।
4: बस 20,000 का? आपको पता है आजकल इतने हैवी सूट तो 30,000 से कम में नहीं आते, ये तो आपको बड़े सही रेट पे मिल गए।
3: अच्छा ले लो फिर।
4: हाँ हाँ ले लो ले लो।
3: चलो तुम कहती हो तो ले लेता हूँ। वैसे भी इस राखी पे मैंने दीदी को कुछ भी नहीं दिया।

save,

रंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज़, ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो आइए श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।